दूरियां नजदीकियां बन गई जब इस दफा है आशा भोसले के साथ में किशोरदा आपको सुनाने वाले थे। जवान तुम हो जवान हम है ये प्यार तुमसे हो गया है, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले जरा मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ और वो ये है, जमाने वाले हमें इतना गरीब समझते हैं, जमाने वाले हमें इतना गरीब क्यों समझते हैं, उनको मालूम नहीं कि हम दर्द की दौलत से मालामाल हैं।

अभी आप सुन रहे थे जवान तुम हो जवान हम है, ये प्यार तुमसे हो गया है। मोहम्मद रफी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं, फ्रॉम द मूवी जीवन रेखा से हम पेश करते हैं यार मेरे मेरी बाहों में आ जा। और ये गीत हम पेश करके हैं खास करके दो व्यक्ति के वास्ते, यानी विद्या जी और संता जी के वास्ते, जबकि ये दोनों प्रोग्राम मिलकर सुन रहे हैं। तो चलिए ये गीत हो जाए उन दोनों के नाम।

मित्र फी जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी जीवन रेखा से हमने पेश किया है यार मेरे मेरी बाहों में आजा। और ये गीत हमने पेश किया है विद्या जी और शांता जी के वास्ते जबकि ये दोनों प्रोग्राम सुनते हैं। दिल बेकरार सा है

मोहम्मद रफी जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे दिल बेकरार सा है। मोहम्मद रफी प्रोग्राम में फिर से आ रहे हैं। सुनने वालों, जियाओ जियाओ जिया, कुछ बोल दो।

अभी आप सुन रहे थे जियाओ जियाओ जिया कुछ बोल दो, गुमराह है फिल्म का नाम। और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले जी की आवाज में।

आप सुन रहे थे इन हवाओं में इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे, फ्रॉम द मूवी गुमराह से हमने पेश किए हैं

वाह क्या बात है रफ़ी साहब और लता जी, आपको सुनाए फिल्म माधवी में से निकाले हमने निगति निघ्न शस्त्र का ये गीत, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर 1969 का ये गीत चला ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। वो है क्या ख्याल है, चले सुनते हैं।

ये घर बहुत हसीन है। ये शानदार गीत चला ओवर फ्रॉम हिंदुस्तानी रेडियो, जगजीत सिंह जी और चित्रा सिंह जी ये दोनों मिलके आपको सुनाए हैं फिल्म है साथ साथ में से निकाल कर। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, आपका हृदय से स्वागत है। और तो लीजिए, अगर आप हैं इस वक्त, हम आपको सुनाते हैं क्या ख्याल है ये गीत इस तरह से आ रहा है।

रफी साहब की आवाज में आपको सुनाया गया। आपके हसीन रुख फिल्म बाहर फिर भी आएंगे में से निकाले हैं, ओपन एयर के साथ पर हमने पेश की। तो लीजिए ओपन एयर के बाद क्या ख्याल है। मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, दिल ही तो है निगत इंद्रिय शस्त्र 1963 का ये गीत मुकेश जी और सुमन कल्याणपुर जी।

मस्ती भरा है शमा मन्ना दे जी और लता जी मिलके फिल्म परवरिश में से आपको हमने ये गीत सुनाए निकले अख्तम फैफ तक 1958 का ये गीत देखते हैं दत्ताराम के साज पर। लेकिन उससे पहले दिल हिते है के गाना चल रहा था, लेकिन मुझे भी नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गीत ने कूद फान मचाकर बस फिल्म परवरिश का गीत बजने लगा। बहरहाल फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुने जो लोग चुन की मीटर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम पेश कर रहे हैं ये गीत।

छलका ये जाम रफ़ी साहब की आवाज़ में आपने आपके आपको हम सुनाए हैं इस तरह से फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए देखते हैं ये गीत फिल्म दिल ही तो है का एक बार फिर, कौन जाने अब की नाकूद है, लेकिन कोई और गीत हम आपको सुनाने वाले हैं। इस तरह से आ रहा है

तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, हमने पेश की वही फिल्म दिल ही तो है में से निकाल कर। अब की बार तो इन्होंने नहीं कूदा। बहरहाल आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। जी हाँ, तो अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। तो क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये गीत सुनाऊं? गंवार में से निकाल रहे हैं आशा जी और रफी साहब।

फिल्म कमार में से निकाले हमने नौशाद अली की साँच पर, और रफ़ी साहब और आशा जी आपको सुनाई ये शानदार गीत ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप चून हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है अगर ये पेश करूं, बस धमाकेदार गीत है।

एक बेचारा प्यार का मारा, रफ़ी साहब की आवाज़ में हम आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत क्या ख्याल है? जी हाँ, मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ अ मिलियंस कंचन जी के साथ फिल्म धर्मात्मा में से है।

तुमने किसी से कभी प्यार किया है, ये शानदार गीत चला। जी हाँ, ये शानदार गीत चला ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जी हाँ, तो चलिए कार्यक्रम में हम आगे कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। और क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ इस तरह से,

0: दुनिया में हमारा दिल होते है, ये शानदार गीत हम निकारे फिल्म दिल ही तो है में से शंकर जय किशन के साज पर पेश हुआ ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जबकि लीजिए लता जी एक बार फिर है, जी हाँ, पंडित रविशंकर के त्रिभुत के लिए निगित शस्त्र का ये फिल्म है।
1: ये ऑल इंडिया रेडियो बम्बई है। अब हम आपको कुछ पुराने गानों के रिकॉर्ड सुनाएंगे। आज से 10 साल पहले इन गानों ने धूम मचा दी थी। पहले सुनिए सांवरे सांवरे, गायिका अनुराधा राय।
0: जिसे के पंडित रविशंकर वो मशहूर सितारिस्ट है।

ये साज कभी पंडित रविशंकर जी ने स्टेज पर बजाया था और इसी साज से उन्होंने ओपनिंग की यानी शुरू की। तो ये धुन को म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन ने इसमें जान डाल दी और इसे लता जी से ये धुन गवाया शब्दों के साथ। और हमने पेश की वो परफॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत पेश करने वाले आशा जी उर्फ़ी साहब जी, हाँ फिल्म जिद्दी में से निकाले हैं।

आशा जी और रफी साहब की आवाज़ में फिल्म जिद्दी में से निकाले हैं ये गीत और हमने पेश की आपके लिए। चलिए अगला गीत चलाने वाले हैं, क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊँ, लता जी और मन्ना दे जी। जी हाँ, लता जी और मन्ना दे जी मिल के आपको सुनाएंगे ये शानदार गीत। और देखते हैं तो इसे मैं निकाल रहा हूँ फिल्म रात और दिन में से, शंकर जयकिशन के साज पर, बस इस तरह से।

लता जी और मन्ना दे जी फिल्म रातों दिन में से निकाले हैं और शंकर जय किशन के साज पर हमने पेश किए। लीजिए एवरग्रीन किशोर कुमार अपने प्यार की इजहार कर रहा है और आगे इन्हीं से सुनिए एवरग्रीन किशोर कुमार।

तुम कितनी खूबसूरत हो, क्यों दिल तुम पे है इतना दीवाना। एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए फिल्म जंगल में मंगल में से निकाल कर ये गीत हमने पेश की। तो लीजिए अगला गीत हम चल आपको सुनाने वाले हैं, क्या ख्याल है ये, इस तरह से फिल्म आओ प्यार करें।

लता जी की इस गाने पर मुझे कुछ नहीं कहना है। जी हाँ, मैं कुछ नहीं कहूँगा और चलाऊँगा ये गीत। फिल्म ये रात फिर ना आएगी, निगेती शस्त्र को 1966 का ये गीत। जी हाँ, सुनिए महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में।

मेरा प्यार वो है महेंद्र कपूर जी की आवाज में अपनी सभी छाएं उन्होंने रख दी। फिल्म का नाम है ये रात फिर ना आएगी निगती शस्त्र को 1966 का ये गीत ओपे नैयर के साज पर हमने पेश किए। लीजिए प्लेयर में एक गीत हमने और रखे है मैथिली मुकेश जी का, पता नहीं बहुत दिन हुए होंगे आप ये गीत शायद सुने हैं, मैं भी बहुत दिनों बाद ये गीत चला रहा हूँ, ये भी हो सकता है आपने हाल ही में सुने होंगे, तो मेरा बदनसीबी है, वरना लीजिए मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुना रहा है।

माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस अगर सैड सॉन्ग हो तो मुकेश जी तो गम का दरिया है, और ये गीत हम आपको सुनाएं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। फिल्म अप्रैल फुल में से नहीं गई फिर से 1964 का ये गीत लचा दी शंकर जयकिशन के साथ।

टून है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। तो चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, अब वो ये है, कभी कभी आप कहीं जलसे में जाते हैं यानी नेवता में जाते हैं, कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो, को शुशु शुशु बात करता है यानी छुपके छुपा के, तो इसके बारे में भी बॉलीवुड ने एक गीत बनाए हैं। चलिए वही गीत हम आपको सुनाते हैं, आशा जी आपको सुना रही है कि लोग कभी कभी शुशु शुशु करते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं, कानों में बात करते हैं, खुल के बात नहीं करते हैं, जिसे कहते हैं काना फुसकी।

धीरे धीरे बोलो जी, नाचते नाचते आप शायद थक गए होंगे। जी हाँ, मुमकिन है थक गए होंगे, तो लीजिए मैं आपको थोड़ी देर आराम देता हूँ।

हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर ये गीत पेश हुआ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। हमने पेश की माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी फिल्म एक बेचारा में से निकाल कर निकली ट्विन सेफ तक का ये गीत। चलिए अगला गीत है और वो गीत है नतीजा हमारी माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। क्या ख्याल है?

ये तुम भी ना सोचो, ये हम भी ना सोचे, माइकी मुकेश और आशा जी मिलके आपको गीत ये सुनाए ओ फरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये सुनाऊं, इस तरह से आ रहा है।

छाई बरखा बहार आंगना फुहार निगति निग्न शस्तक आशा जी और जी लता आशा और लता मिल के गाए हैं फिल्म चिराग में से निकाल कर निगति निग्न शस्तक 1969 का ये गीत हमने पेश की मदन मोहन के साज पर। चलिए मदन मोहन जी के बाद हम पेश कर रहे शंकर जय किशन, क्या शंकर जय किशन इस तरह से।

0: आजादी हो,
1: हो जाती है, आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: दादा,
0: सुनो तो
1: दादा,
0: सुनो तो
1: दादा,
0: सुनो तो। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: यहाँ आए किस लिए?
1: आपने बुलाया किस लिए?
0: अच्छा आए हैं तो काम भी बताइए।
1: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
0: मुस्कुराने की न कोई बात है।

0: आए किस लिए। मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम?
0: हाँ
1: काम सीधा साधा है, मेरा एक वादा है।
0: अच्छा।

आप यहाँ आए किस लिए? वादे तो बहुत लिए, लेकिन करना पड़ेगा जरूर, तो अवश्य करेंगे। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, और ये गीत इस तरह से है।

आओ प्यार कर ले। जी हाँ, फिल्म सच्चा झूठा में से निकाले हैं आशा जी और साथी मिल के आपको सुनाए निगति सैफ तक का ये गीत है। कल्याण जी आनंद जी के साथ पर गुलशन बावरा का लिखी हुई गीत हमने पेश की फाहन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो ये क्या ख्याल है रफ़ी साहब का ये गीत देखते हैं ओपन एयर के साथ पर। इस गीत पे एक कहानी है पर नहीं के है गीत की एक कहानी है। दरअसल में जब रिकॉर्डिंग होने वाला था तो रफ़ी साहब के सभी साजिंदे वहाँ मौजूद थे हाजिर थे लेकिन जो तुरम वाले थे और ढोल वाले थे वे लोग अभी नहीं आए थे। तो ओ पी नैयर ने कुछ देर इंतज़ार किया 10-15 मिनट लेकिन आधे घंटा बाद जब ये लोग नहीं आए और उस समय तो टेलीफोन था ही नहीं मोबाइल अरे टेलीफोन था लेकिन मोबाइल नहीं था तो तार करके ओ पी नैयर साहब को बता भी नहीं सकते थे। तो ओ पी नैयर गुस्सा में आकर दरवाज़ा बंद कर दी स्टूडियो के और रफ़ी साहब से कह दिया और आशा जी से तब सभी साजिंदे से कि चलो ये गीत हम रिकॉर्ड करते हैं लेकिन कोई ड्रम कोई कुछ नहीं रहेगा कोई ढोल तबला नहीं रहेगा। तो ये गीत आप ध्यान से सुनिए किस तरह से ये इस गीत के धुन को और उसके ताल को बिल्कुल बदल दिया गया और रिकॉर्डिंग किया गया बगैर ढोल तबला।

फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना का ये गीत है। जी हाँ, निगदिन तुई सस्तक का ओपन अयर के साज पर। कहानी तो हमने बता चुके हैं, अब उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात भी है कि हम भी सोच रहे हैं यहाँ बैठकर, अगर इसमें ढोल तबला भत्ता जिसका मास्टर है ओपन अयर, तो कैसा रिकॉर्डिंग रहता। बहरहाल ये भी कम नहीं है। बहुत प्यारा गीत आशा जी और रफ़ी साहब ने मिल के पेश किए, आपको सुनाएं।

सुखविंदर सिंह आपको सुनाइए लगन लगी। सुखविंदर सिंह एक ऐसा गायक है जो एक गीत में 5 या 7 धुन बदल सकता है, और उसकी आवाज़ तो वह क्या कहना है। ये बहुत से राग एक गीत में गा सकता है, और म्यूजिक डायरेक्टर को ये बात पता है, इसीलिए कभी कभी इन्हें एक ऐसा गीत देते हैं कि 3 या 4 धुनें उसमें हो और 3-4 राग हो, फिर भी वो बहुत मज़े से गा लेता है सुखविंदर सिंह। चलिए कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं और आपको ये सुना रहे हैं

मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, लता जी आओ मनमोहन सिंह, लता जी और मनमोहन सिंह फिल्म लावारिस में से निकालकर निकितनी सैफ इन तक 1970 का यह गीत है, उत्तम जगदीश के साज पर हमने पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। प्लेयर में हमने एक गीत रखे, एक धमाकेदार गीत है। ये फिल्म तो आपने अवश्य देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो अभी बाद में बताएंगे, लेकिन चलो सुनते हैं ये शानदार गीत है।

सैया ले गई जाम लीजिया मेरी पहली नजर, और यानी पहली नज़र में जिया ले गई उनके। लेकिन अजीब है कि प्लेयर पर लिखा है आशा जी और रफ़ी साहब की आवाज़, लेकिन इसमें तो रफ़ी साहब की कोई दरस नहीं है। प्रेम धामन की लिखी हुई गीत है, फिल्म एक फूल दो माली नीक तीन नीक नशस्त का ये गीत है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल कुछ गलती हुआ होगा। बहरहाल आशा जी आपको सुनाइए ये शानदार गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। आप सुन रहे हैं मैं चला रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो ये गीत है। ये गीत की भी एक कहानी है। उदित नारायण ढूंढ रहा था बॉलीवुड में यानी फिल्म इंडस्ट्री में आने को, तो ये तो आपको पता है, जाहिर है कि जो लोग आते हैं बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो पापड़ तो बहुत बेले। लेकिन एक दिन हुआ कि उदित नारायण के दरवाजे पर जहाँ पर रहता था एक गाड़ी आकर खड़ा हुआ, और एक शख्स उसमें से निकला, कहा उदित तुम्हारा नाम उदित नारायण है? उसने कहा हाँ। तो उसने कहा डायरेक्टर आपको बुलाया है, किस लिए? आपको मौका मिलेगा गाने को। तो उदित नारायण बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, पहुँच गया, एक घंटा पहले पहुँच गया वहाँ। तो वहाँ किसके साथ उन्हें गाना था? मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ। जी हाँ, तो थोड़ा डर गया था। तो रफ़ी साहब ने उन्हें देखा, कहा बेटे डरना मत, नौजवान था। तो रफ़ी साहब ने कहा बेटे डरना मत, बस बेनिधड़क होकर गा, बेधड़क होकर गा। और एक बात उन्होंने उदित नारायण से कहा, रफ़ी साहब ने कहा कि तुम गिटार बजाते हो? तो उदित नारायण कहा हाँ हम गिटार बजाते हैं। बोले तुम गिटार बजाते हुए बहुत अच्छा लगोगे, एक दिन गिटार बजाना कभी स्टेज पर। और ये बात उदित नारायण को बहुत अच्छा लगा। तो चलिए ये पहला गीत था उदित नारायण ने रफ़ी साहब के साथ गाया, इस तरह से हम पेश कर रहे हैं।

हाँ जी, उरित नारायण और रफ़ी साहब के ये शानदार गीत हम आपको सुनाए हैं, जबकि उरित नारायण पहली बार रफ़ी साहब के साथ आवाज़ मिलाकर ये गीत को गाए हैं। PIN51 FM PIN51 पर आप चुने, जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए, आपका स्वागत करते हुए फोन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में, क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊँ, इस तरह से आ रहा है। जी हाँ,

हाँ फिल्म त्रिशूल तो आप देखे होंगे, खय्याम के साज पर ये द्वैत लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं फॉन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। प्लेयर में हमने एक गीत रखे हैं, जी हाँ गीत आपको मालूम है, सुरना में आप ये फिल्म देखे, घर पर भी देखे होंगे, थिएटर में भी देखे होंगे, फिल्म गुमराह। फिल्म गुमराह का ये गीत हम आपको सुनाने वाले हैं महेंद्र कपूर की आवाज़ में। ये गीत मुझे याद है सुरिनाम में जब महेंद्र कपूर जी आए थे, बरस मुझे इस वक्त याद नहीं है, बहरहाल तियात्र स्थान में उन्होंने शो दी और ये गीत को उन्होंने गाए, लेकिन एक दो लाइन नेखर एंगल्स में गाए हैं। इन हवाओं में इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकार है, उन्होंने गाया, मुझे याद है, लेकिन उस समय मेरे पास कैसेट नहीं था कि हम ले लेते, शायद किसी के पास होगा उनकी आवाज़। इन न विनती इन न कोरू विनती मिलो भी ये कारियो, महेंद्र कपूर ने गाए थे लेकिन मेरे पास नहीं है।

महेंद्र कपूर जी और आशा जी ये दोनों मिलके आपको सुनाए और गीत जिस जिस समय चल रहा है फिल्म गुमराह का है रवि के साज पर गीत जिस समय चल रहा है तो एक टुकड़ा मुझे और याद आया कोंग नामी नामी मी लो भी ये कार्योल यू लेकिन अफसोस मेरे पास कसेट नहीं था वरना हम ले लेते उनका गाना जो उन्होंने स्टार में गाए थे। बहरहाल चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं जी हाँ और वो ये है इस तरह से

नजर को संभालो, ये क्या हो रहा है। सुमन कल्याणपुर और मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म कोबरा गर्ल में से हमने निकाल कर आपको सुनाए हैं। जबकि आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेन में हमने ये गीत रखे हैं, जी हाँ, फिल्म प्रोफेसर में से निकाल कर, हाँ, प्रोफेसर में से निकाल कर आ रहा है ये गीत। इस तरह से सुनते हैं।

आवाज देखे हमें तुम बुलाओ। जी हाँ, लता जी और रफी साहब का ये गीत हम आपको सुनाए शंकर जय किशन के साथ पर फिल्म प्रोफेसर में निकितिन तुई शस्त्र का ये गीत है। और मैं बताने वाला था ये कि ये गीत जब लिखी गई तो शमी कपूर का इतराज़ था कि इसमें मेरी आवाज़ बहुत कम है, यानी रफ़ी की आवाज़ बहुत कम है, क्या किया जाए। और देखा जाए तो सिर्फ एन दर्द शमी कपूर ने कहा सिर्फ एक तिहाई यानी एन दर्द मैं दिखता हूँ और रफ़ी साहब के गाने हैं। तो बाद में थोड़ा सा और रखा गया, लेकिन रफ़ी साहब ने कहा शमी कपूर से, शमी कपूर, शमी जी डरिए मत, एक तिहाई हुआ तो क्या हुआ, और गाना तो रिकॉर्डिंग होगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिस समय जिस टाइम ये गीत रिकॉर्ड किया गया रफ़ी साहब और लता जी की, तो लोग सुनते रह गए हैं कि वाह क्या बात है। चाहे एक ही तिहाई शमी कपूर दिखा इस शूटिंग में और फिल्म में, लेकिन गाना बहुत अव्वल दर्जे का है। और ये गीत हम आपको सुनाएं।

दीवाना करके छोड़ेंगे, ये गीत आपको सुनाया गया। जी हाँ, इस तरह से हमने पेश की फौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में।

वत्सला माता वैष्णो देवी सदा सबकी पुकार सुनती हैं। राजा चंद्रदेव पर टूटा दुख का पहाड़, पहाड़ों वाली माता ने राजा और उसकी पुत्री का दुख हर लिया। उनके वरदान से पुत्री का निष्प्राण सुहाग जीवित हो गया। पुत्री के व्रत से मां प्रसन्न हो गईं। राजा की श्रद्धा भक्ति अष्टभुजाधारी मां ने स्वीकार कर ली। वैष्णो माता का द्वार पावन द्वार है।

0: Dostlar ve kulakçılar.
1: उज़्बेकिस्तान से ये सुंदर सा गीत आपके लिए यहाँ से चला दिया गया है। ये पल आपको बहुत सारे खुशियाँ लाए, जहाँ पे भी हो, जिस वक्त पे भी जहाँ आप रहे, वहाँ के माहौल जरूर से, वहाँ के महफिल, वहाँ इर्द गिर्द जो है, जब जिस समय बस मुस्कुराते हंसी खुशी में बीते। यहाँ से कुछ दो लाइन आपके सुनाना चाहती हूँ। लाइन के बोल ऐसा शुरुआत है, घटिया लोक घटिया लोक। उसके एक उदाहरण है, उदाहरण की जगह से हम आपको सुनाएंगे कि घटिया लोक कैसे होता है। उदाहरण के रूप में ऐसा है कि प्याज को जितना भी प्यार से क्यों ना काटे, आंखों में आंसू ला ही देते हैं। उसी प्रकार कुछ लोग भी हमारे जिंदगी में ऐसे ही होते हैं, जिन्हें हम कितने भी प्यार सम्मान और इज्जत दे दे, लेकिन वो आखिरकार अपनी घटिया हरकतें दिखा ही देते हैं। तो प्याज के उदाहरण से घटिया लोग के एक उदाहरण दिया गया है, तो आपसे हम यहाँ पे बांट ली है। जी हाँ, आपके लिए अल्ताफ राजा जी।
2: जाने प्यार के नाजुक रिश्तों की गहराई को, मेरी आंखों ने झेला है रातों की तन्हाई को। मेरे दिल की हालत क्या है मैं जानूं या दिल जाने, मेरे अलावा कौन बताए जाके उस हरजाई को।

दर्द को जाहिर करने से तो दर्द का सहना ही अच्छा है। दर्द को जाहिर करने से तो दर्द का सहना ही अच्छा है। अपनी ही रुसवाई होगी, कुछ ना कहना ही अच्छा है। कौन है अपना इस बस्ती में, किससे दिल का भेद बताएं। ओ हर जाई तेरे बारे में, चुप रहना ही अच्छा है।

जीना इसी का नाम है मेरे दोस्त, जीना इसी का नाम है। तो चलो हम आपसे बता दे कि जीना किसका नाम है। जीना इसी का नाम है कि शरीर को चंगा रखो, शरीर को चंगा रखो और दिमाग को ठंडा रखो, जेब को, जी हाँ जेब को गर्म रखो। जेब को गर्म रखो और यानी कि ढेर से पैसा उसमें होना चाहिए। और आंखों को, आंखों में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो। जी हाँ जुबान को नरम रखो, दिल में रहम रखो और क्रोध पर लगाम रखो। व्यवहार को साफ रखो और खास तौर पे होंठों पर मुस्कान रखो। अगर आपके होंठों पे मुस्कान जो आ गए ना, तो आपके आंखों में शर्म रहेगा, जुबान नरम रहेगा, दिल रहम रहेगा, क्रोध पर आप यूं लगाम रख पाओगे और व्यवहार आपके तो साफ हो जाएगा।

शामिल कर दिया गया है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के प्रोग्राम में पंकज उदास जी को। घर में दर्पण लगाते समय ये गलती कभी ना करना। आपने ठीक सुना, घर में दर्पण लगाते समय ये गलती कभी ना करना। दर्पण को कहते हैं आईना, स्पीकल। कहाँ पर आपको दर्पण नहीं लगाना चाहिए? पहला है मुख्य द्वार के सामने दर्पण ठीक नहीं है लगाने में। मुख्य द्वार यानी कि होफ इनखांग, बैत के सामने यानी कि स्लाब, स्लाब कामर में आपके बिस्तर जहां है उसके सामने दर्पण लगाना ठीक नहीं है। बैत के सामने दर्पण लगाना ठीक नहीं है। दक्षिण दिशा में दर्पण लगाना ठीक भी नहीं माना जाता है। दक्षिण यानी कि सौदन। दर्पण को अंधेरे में रखना ठीक भी नहीं माना जाता है। और कमरे में बहुत सारे दर्पण होना भी ठीक नहीं माना जाता है। सीढ़ियां के सामने दर्पण लगाना भी ठीक माना नहीं जाता है। सीढ़ियों के सामने दर्पण होना ठीक नहीं है। टूटे या धुंधले दर्पण का इस्तेमाल करना ठीक भी नहीं है। टूटे या धुंधले दर्पण। रसोई में दर्पण लगाना ठीक नहीं है। और दर्पण का मुंह नीचे की ओर रखना भी ठीक नहीं है। यानी कि दर्पण को गंदा या धूल भरा रखना भी ठीक नहीं है। Het brengt alleen maar negatieve energie. Het trekt ook negatieve energie. Je hebt een baat opgebouwd, die je hebt, was toen Sastrake aan de zaak.

पंकज उदास के आवाज में कि आइए ये मौसम आपके लिए। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका हृदय टूटा, सपने भी टूटे, अपनों भी रूठे, फिर भी कहते हैं मैं ठीक हूँ।

किसी से, जब किसी पर से भरोसा उठ जाता है ना, जब किसी पर से भरोसा उठ जाता है तब सामने वाले चाहे आंसू बहाए या कसमें खाए, असर नहीं होता। नो, जिंदगी दोबारा वापस नहीं मिलता है, जो वक्त गुजर गया सो गुजर गया। आज में जी लो, आने वाला कल का पता नहीं, पर भरोसा में है हम जीते हैं। जिंदगी दोबारा वापस नहीं मिलता, इसलिए इसे दुख में, गुस्से में, नाराजगी में, नफरत

पंकज उदास के आवाज में सुंदर सा गजल पेश किया गया। क्या क्या दोपहर में सोना चाहिए, जिसे हम कहते हैं मिदाखदुच, इस दैट वेल खुद इज द फ्राग। क्या दोपहर में सोना चाहिए, जरूर सोना चाहिए, जरूर से सोना चाहिए। तो आपको यहाँ हम बता देते हैं क्योंकि क्या फायदा है अगर आप दोपहर में थोड़ा से सो जाए। दोपहर में 15 या 20 मिनट तक आप जो सो जाए तो उसका फायदा क्या होता है, हम आपको यहाँ से बता देते हैं आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। द एनख एख्त आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। अगर आप दोपहर में 15 से 20 मिनट तक सोते हो तो ये शरीर के लिए फायदेमंद होता है। दिस हेल्पफुल फॉर यू लिखम, हमारा दिमाग बेहतर काम करता है। हमारा दिमाग बेहतर काम करता है, दोपहर के नींद से याददाश्त बढ़ती है। ब्लड ग्रुप का खतरा भी कम होता है और दिल स्वस्थ रहता है, तनाव कम होता है। Door 15 tot 30 minuten te liggen op een middag heeft zijn voordelen. Moet je 's middags slapen? Een paar voordelen wat het slapen 's middags doet. Als je 's middags 15 tot 30 minuten slaapt, is het goed voor het lichaam. Onze hersenen werken beter. Middagslaap verbetert het geheugen. Ook het risico op een hoge bloeddruk neemt af en het hart blijft gezond en stress vermindert. Dus het heeft zijn voordelen. Als u in het gelegenheid bent, gewoon doen. Even 15 minuten, 10, 15 minuten hoog uit 30 minuten. Als u uitrust, bent u opgeladen. In sommige landen heb ik gehoord en ook gelezen dat ze tijdens het werk gewoon moeten stoppen om 15 tot 30 minuten om gewoon uit te rusten. Ze zijn gewoon verplicht om dat te doen, om het te kunnen opladen om verder te kunnen. Aur waise hum Suriname mein bhi middag dutje lete

आकाशवाणी के प्यारे प्यारे सुनने वालों, दोस्तों, भाई बहनों, जान पहचान वालों, आप सभी को हार्दिक से स्वागत है। आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। रिश्तों को वक्त देना सीखो, प्यार भी रहेगा और साथ भी रहेगा। मैं हूँ आपिका सेविका शांता, स्वीकार कीजिए मेरी प्यार भरी राम राम, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, राधे राधे, नमस्कार हो जी।

सुनने वालों, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, जो को प्यार हो जाता है तो चलते फिरते बस कुछ गुनगुनाते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, तो आप उनको मुस्कान देखकर, उनके चेहरा देखकर आपको पता हो जाता है ये कहूँ दिल बैठे बैठा है। ऐसे ही होता है सुनने वालों, हर दिल जो प्यार करेगा वो ज़रूर से गाना गाएगा। संगीत और संगीत के प्यारे सुनने वालों, ये आप ही के लिए सब गीत चुनकर और रखी हूँ।

मेरे सनम हो मेरे सनम, आपको तो पता चल गया होगा कौन सा फिल्म है। जी हाँ, फिल्म संगम से हम यहाँ से आपके लिए ये सुंदर सुंदर गीतन निकाल रखी हूँ। और इस बार चलेंगे कि बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं, तो मैं ज़रूर कहूँगी ज़रूर से होगा।

0: ज़रूर से होगा, संगम जो ज़रूर से होगा, इसमें कोई सोच के बात नहीं है। आपको तमाम खुशियाँ और खुशनसीबियाँ पेश किया जाता है अभी का फ़ाउन हिंदुस्तानी रेडियो के ज़रिए से, और यहाँ पर आपके लिए चुन कर रखी हूँ वही मशहूर फिल्म फिल्म संगम से ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। है ना दिल छू जाने वाली गीत
1: लिखूं।
0: सभी संगीत और संगीत प्रेमियों के वास्ते हम यहाँ से एक बार फिर शुरुआत कर देते हैं।

आपको सुना दे कि आप मेरी जिंदगी हो और आप ही बंदगी हो। लेव वंदाग वेस फ्रई एन डांस, जी हाँ, लेव वंदाग वेस फ्रई एन डांस। द टाइड फ्लीग आन ओंस फोरबै, मार द हेरिनरिंगे die we onderweg verzamelen, zullen altijd blijven. Een warme groet, positief blijven, is het geheim. Is het geheim van een mooie, gelukkige leven. Nieuwe dag, nieuwe kansen. Leef en geniet. Enjoy is your day.

आप ही के दिल के पास, आप ही के गुजारिश में ये सुंदर सा गीत आप ही के लिए चलाया जाता है आप ही का फोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। खुद को खुद ही खुश रखे, खुद को खुद ही खुश रखो, ये जिम्मेदारी किसी और की नहीं बल्कि अपने आप का है, आप ही का है कि आप अपने आप को खुश रखो।

जिंदगी दो पल की है सुनने वालों, जिंदगी दो पल की है, मजे में जी लो, मजे में जी लो, वक्त वक्त की बात है यहाँ सब ऐ मेरे दोस्तों, इसलिए कल को छोड़ो और आज में ही जी लो। जी हाँ, आज में ही जी लो।

वही मशहूर फिल्म संगम से मुकेश साहब की आवाज में दोस्त दोस्त ना रहा।

राज कपूर, राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा ने मालविजयंती माला जी इस फिल्म में मिलकर और अपना कमाल दिखाई है। तुम खफा हो गए तो कोई खुशी ना रहेगी, तुम खफा हो गए तो कोई खुशी ना रहेगी, तुम्हारे बिना चिरागों में रोशनी ना रहेगी। क्या कहे क्या कहे क्या गुजरे इस दिल पर, जिंदा तो रहेंगे पर

जी हाँ, दीवाना तो सैकड़ों में जरूर से पहचाना जाएगा, बचकर कहाँ जाओगे आप। हाँ हाँ, भूल जाओ बीते हुए कल को, भूल जाओ बीते हुए कल को, दिल में बसा लो आने वाले कल को, मुस्कुराते रहो चाहे जैसे भी हो पल। जी हाँ सुनने वालों, थोड़ा सा गम तो होगा, फिर भी मुस्कुराते रहो चाहे जैसे भी पल होगा, खुशियाँ लेकर आएगा आने वाला कल।

बस आप, मैं भी, आप नेक कार्य निरंतर करते रहे, आप नेक कार्य निरंतर करते रहे, कोई आपका सम्मान करे या ना करे, आपकी अंतरात्मा सदा आपकी सम्मानित करेगी। इससे बड़ा सुख जीवन में और कुछ भी नहीं है।

चाहे घर प्यार तेरा सनम रजिंदर कुमार शायरा बनू, जो फिल्म झुक गया आसमान से निकाला गया मोहम्मद रफी जी की आवाज में। इस दिल के दास्तां बड़ी अजीब होती है, भरी महफिल में भरी महफिल से इसे खुशी नसीब होती है, किसी के पास आने पर खुशी हो या ना हो, पर दूर जाने पर बड़ी तकलीफ होती है।

मुझे यूं बुला ना पाओगे। सुंदर सा गीत फरमा दी है रफ़ी साहब जी ने। फिल्म का नाम है पगला कहीं का, फिल्म का नाम ऐसा ही है पगला कहीं का, और रफ़ी साहब जी ने सुना दी तुम मुझे यूं बुला ना पाओगे। दिल में मेरी सांसों का पनाह मिल जाए, तेरे दिल में मेरी सांसों की पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। अधूरी सांसें थी, अधूरी धड़कन थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पर और अब पूरे हैं हम।

महाकाया सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आकाशवाणी रेडियो फान के सुनने वालों, प्रिय आत्माओं, प्रिय भक्तजनों, आप सभी को हार्दिक से स्वागत है आज इस खूबसूरत दिवस में। स्वीकार कीजिए सभी का शांता की प्यार भरी राम राम नमस्कार हो जी। आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। आप सभी को हार्दिक से स्वागत है। खूबसूरत दिवस जो हम सभी को मिले हैं एक बार फिर कुछ अच्छे करने के लिए, कुछ अच्छे कार्य करने के लिए, अच्छी यादगार बनाने के लिए। अच्छी यादगार के साथ साथ अपन कर्म भी अच्छा बने। बहुत सारे शुभकामनाएं और बधाइयां आप सभी को पेश किया जाता है। आप जहां भी हो, जैसे भी हो, यही दुआ प्रार्थना है कि आप खुशहाल रहे, मुस्कुराते रहे। पल जैसा भी है गुजरता तो है। इसी वाणी के साथ सुनने वालों, आप ही का स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम लेके यहाँ पर उपस्थित हूँ और यहाँ से आरंभ करने को जा रही हूँ। पेश है देन हाग से श्रीमती लिलियन मोतीराम जी की तरफ से आप सभी को, हम सभी को शुभ दिवस और शुभ प्रभात कहते हैं हनुमान चालीसा के साथ।

जय राम। सुंदर हनुमान चालीसा से यहाँ आरंभ किया गया है भजन कार्यक्रम। पेश किया गया है देनाह से श्रीमती लिलियन मोती राम जी की तरफ से। और आगे हम चलते हैं देनाह से खमेंत रात श्रीमती लेना बाबू राम जी की तरफ से। इस बार सुनेंगे सत्यम शिवम सुंदरम।

की आवाज़ में हम सुन रहे हैं सत्यम शिवम सुंदरम, जो लता जी के गाए हुए गीत हैं, और वो भी पेश किया गया है दनहाक से खमीन तराजलित श्रीमती लैन बाबू राम जी की तरफ से। आप सभी को एक मंगलमय दिवस पेश किया जाता है। सुरीनाम अली फॉर्नो मैन कंडाम हुक इंदिरा गांधी वैक से, श्री भक्तराज शिव पार्वती मंदिर से, श्री पंडित सुभाष महावीर, श्री पंडित सुभाष महावीर इस ठंडी ठंडी भजन माला कार्यक्रम में शुभ प्रभात और मंगलमय दिवस कहते हुए अनूप जलोता जी की आवाज़ में

0: श्याम श्याम शुभ प्रभात कहते हुए श्री नाम अली फोनोमैन का नाम हुक इंदिरा गांधी वैक से श्री भक्त राज शिव पार्वती मंदिर से श्री पंडित सुभाष महावीर आप सभी को ये सुंदर सा भजन सुना दिया है फावन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan.

ला और ये सुंदर सा भजन इस भजन माला कार्यक्रम में पेश किया गया है। कनाडा टोरंटो और एम्स्टर्डम से नेबल पैलेस फॉर ऑल हिपोटेकन फिना शेयरिंग आन एन फेरकोप फॉर वोनिंग एम बंधन जो श्रीमान प्रदीप सुचित्राम के निर्देश में है। और श्रीमान प्रदीप सुचित्राम की तरफ से ये सुंदर सा भजन हमने श्रवण की है। आगे हम चलते हैं दनहा खलास कफेन फोर पार्क से।

आनंद अर्जुन शर्मा, आनंद अर्जुन शर्मा ग्रोथहैंडल बेफे। और यहाँ से एक बार फिर हम सुनेंगे भजन माला कार्यक्रम में श्रीमान आनंद अर्जुन शर्मा के तरफ से।

बहुत सुंदर से फरमाई दी है अनूप ज्योलोता जी ने। जाना तो हम सभी को अकेले ही जाना है। पेश किया गया है दनाखलेस कंफेन फोर पार्क से आनंद अर्जुन शर्मा की तरफ से। आनंद अर्जुन शर्मा खुरुंता हंदल बेफे जो है सुनने वालों, और यहाँ से आपको हम लेकर चलते हैं। अभी हम लेस कफेन फोर पार्क में रहेंगे और इस बार है सुंदा खुरुंता हंदल इन खुरुंते एन फ्रत जो श्रीमान परशुराम मोहनलाल के निर्देशन में है। परशुराम मोहनलाल के तरफ से सुनेंगे।

मेरा जीवन तेरे हवाले पग पग, इसे तुम ही संभाले प्रभु जी। रोटरडाम होफ्लिट टेक्सस वेग नंबर 5 से, रोटरडाम होफ्लिट टेक्सस वेग नंबर 5 से, श्री विष्णु मंदिर संस्था, जागृति संस्था, हिंदी सेवा संघ, श्री गंगा माता मंदिर साथ में, रोटरडाम वेस्ट ब्लॉक मार्करस्ट्रैट 46 से, श्री सरस्वती माता भवन से, मंडली सभापति श्री पंडित राजकुमार महातम जी की तरफ से ये सुंदर सा भजन पेश किया गया है, शुभ प्रभात कहते हुए। फाहर रेडियो के डायरेक्ट स्टाफ पर्सोनल के तरफ से, फाहर रेडियो के डायरेक्ट स्टाफ पर्सोनल और सभी फ्रेवेलर्स के तरफ से तोहफा के रूप में सभी स्पॉन्सर और सभी सुनने वालों, सभी भक्त प्राणियों के वास्ते

तमाम रेडियो फाहुन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरिए नाम सस्ती काले। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश और विदेश के समाचार सुनाना है हमारा काम, यही है हमारे मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

दोस्तों आज है और आज भी आप लोग को हम समाचार सुनाएंगे। तो आज भी हम फेसबुक के माध्यम से आज भी हम लाइव है हमारे यारो। अगर हमारे प्रोग्राम को आप फेसबुक के माध्यम से और यानी कि देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, श्रवण करना चाहते हैं, तो जाइए रॉय सूरज वाली भी नहीं जॉनी नंबर वन भी हमारा फेसबुक है हमारी जनता।

0: तो दोस्तों बहुत गर्मा गर्म खबर है सुरीनाम की और धर्मेंद्रा आएंगे भैया स्त्री तो धर्मेंद्र वेलकम ब्रदर आ गया है राज राम लगन भी आकर जुट गया हमारा प्रोग्राम में आप सबके हमारा प्यार भरी स्वागत है हमारा प्रोग्राम में जुड़ने को आप लोग को पता है दोस्तों इस समय पे और यानी कि सोशल मीडिया पे सुरीनाम देश में गम्मच मचा हुआ है कारण कि वहां पर भैया यहां हॉलैंड में एक आदमी का नाम बा पॉक्स गजराज एक बिजनेसमैन है भैया साकमान है पैसा वाला आदमी है और ओके राजस्थान फर्स्ट इंटरव्यू करी से और राम राम भाई राज राम लगन तो ओके इंटरव्यू करी से तो इंटरव्यू पे इपॉक्स गजराज का बोली से छोटा रूप में आप लोग को हम सुना दे है हमारे जनता
1: And that was 4 weeks later. You know, eventually, when both I and the project received approval that it could proceed in Suriname, people were willing to buy land. We weren't going to ask if we could, state land or whatever. The people just wanted to buy. They said, we'll buy it.
0: तो दोस्तों ये नीदरलैंड्स अफेयर से भी है इसमें और बताए गए है कि ये आदमी सुरीनाम गए थे और ये है पॉक्स गजराज और वहां पर मांगत रहा एक जबरदस्त ने यानी कि दिल बनावे देशवा खातिन 2000 घर मांगत रहा बनावे पॉक्स गजराज वहां पर दोस्तों रेडियो स्थान फास्ट पे ये जाकर और बताई है और क्या क्या बताई है बोले जब गैल है हुआ पे तब बोले जब गैल है तब संतोखी के बोले बैलकरी से कि हम मंगेला 2000 घर बनावे सुरीनाम देश में हाँ दोस्तों सुरीनाम देश में तो संतोखी बोले वही समैया बोले हम ले रही ली कहा बोले है देशवा ले रही ली हम तो ओके समय न रहा तो एन आंद्र मनीर पे बोले उपठा दे से कहा बोले हेगा ब्रुंसवाइक लगे जब ब्रुंसवाइक लगे गैल है तो बोले है कि हम कई मिलियार्ड के बोले हम मांगे लही इन्वेस्टेर करे और वो बोले हेगा 200,000 की कितना बोले मांगे है यहाँ पे बोले है घर बनवावे और वो बोले हेगा तुलन का मांगे तो ब्रुंसवाइक बोले बोली से कि 2% उबद रखवा के बोले हमारे रिकनिंग वहां पे तू पठा दे हवड़ा कर दे तो बोले तो के हम जितना है बोले हम तो के बोले हैगा सफर खनिंग रे खल कर मिया स्टॉक मान 2% स्टॉक 200 2% ऑफ मे रिकने द रिकल एक आले फॉर खनिंग ई अदमिया बोले है और बोले है ने कौ द रिकनिंग बेन तो नहीं सीक अदमिया बोले हम थोड़ा बीमार बाटी कि हम जाबे ई चीज कर 3.5 मिलियार्ड एरो के बातचीत है और ब्रेंसवेक बोले 2% बोले हमारा रिकनिंग वहां पे तू धर दे तब बोले कुछ हो ही पाएगा तो ये रमिया बोले हैगा बोले एक फर्तेल ये ही सो मेर ओवर बॉक्स कैट की ब्रेंसवेक बोले है ओके उका जुका सब पुलिस भैया बड़ी गाड़ी आ रही दे से रमिया बोले ऐसे बोले तो लो मांगे देश चलाए बोले सुरीनाम बोले यूलिसन बनाने बोले बनाने रिपब्लिक है भैया बोले तुन द रेक्टर और अनफंकलक दस्कुंड द क्यूरेटर के बारे में बताई से बोले जो एगो अने होटल एगो रहा लियोंस बेरेक बोले जो हम किल्ली बाटी तब बोले 9 हेक्टार जमीन भी ऊपर रहा 9 हेक्टार जमीन में से बोले नोतार 3 हेक्टार बोले जगहिया बेद दे जो वारफान बोले हम ऊपर बसलाख कर ले रही बोले बसलाख चीज पे बोले सरनाम में बोले हमार 9 हेक्टार जगह जो हम किने रही होटलवा हमें यहाँ स्टार्ट रहा लियोस बैरक पे आप लोग के पता है, बोले ओमा से 3 हेक्टेयर बोले नोतारस ले लीजिएगा, बोले हैगा बेच दे इसे, तो बोले के बेची से, तो बोले की तो के बेची से का बोले है अने कॉम्बी मार्क के, बोले उस समय पे तू जाने बड़का स्पॉन्सर के रहा बहुता के कॉम्बी मार्क रहा, तो बोले तू नालिस नकल बोले अते से बनाने रिपब्लिक इन सुरीनाम, बोले हैगा सन नाम में बोले सब कुछ हुआ बिकाऊ है बहुत इस एनिट में नहीं मार हेड ब्लेव वे एनडीपी यहां लिखल है भैया गप्लंडर्ड व्हाट फॉल्ट एंड नॉक द फर्दिनन इन सुरीनाम। यरमिया बोली से बड़ी बड़ी बात बोले वे हैव न्यू रखेरे एंड यार हु कह के तुरक नार है इख्तियार थी बतावे है एनडीपी या मार ये कान है कह के नरहार, तो ये सब बात भली एकर बारे में भैया। और रोनी ब्रेनस्वेक बड़ी नाराज है और ब्रेनस्वेक का बोले है ओवर पॉक्स बोले नीत आले हिंदुस्तान एंड हैवन दी लील कमानीर फ्रूखर सौदन वे हैट इन द कॉफर बाग हैवन खोई, बोले अब बोले उच्च युवा हम ना करब एकर बारे में ब्रेनस्वेक के जूका ऊका एमएमपी के गाड़ी दे से बोले बंदर अंदर सब बनाई से भैया, तो इ डिस्क्रिमिनेशन से वोट तो ना चाहिए खबर करे के वैसे मल्टीकल्चरल ये मग नीत dit soort dingen gaan zeggen en op bepaalde een bevolking als mensen ons koelie ook noemen vinden we ook niet leuk, hoe kan je zeggen dat Juka AP dit en dat is, dat mag meneer en een gajaraatje niet zeggen zo en zo mensen, ja wat we hegen bolle hegen uitspraken die Pochse gajaraat tijdens een interview bij de Standvaste Radio over hem deed, hoewel Brunswijk de uitlating zeer ernstig noemt roept hij zijn achterban op rustig te blijven en zich niet te laten meeslepen door een boosheid. Or wat je hega volgens Brunswijk mogen de uitspraken van één persoon niet worden geteemd als er gedrag of de mening van de hele bevolking was op Hindustan niet terugkeer is gegaan. De ikker baren mee behoed lamba chowna bhaiya de Brunswijk bari naraj hai ki ee adamia boli hee go saakaman hai a saakaman gaila Suriname investeer kere a usa mangatra ikker upar se 2% le da seg meneer Gajraj wat de waar hai dat weten we niet, dat is het. To Chitra Autaar bhi aakar 7:20 hamara program mein jut gaye hain bhaiya Dilip Budhu bhi aa gaya hai aur yahan yahan par kitne log hai jo jud gaya hai hamara samachar aap log bas sunte raho hamare pyare pyare janta Suriname ka samachar hai। देखो भैया क्यूबाने सुरीनाम में बहुत ढेर है भाई, बड़ी क्यूबाने हैं जोन आदमी सुरीनाम में हैं, आपके तो पता होगा कि कितना ढेर क्यूबाने सुरीनाम देश में हैं। हम भी सुरीनाम देश में गरीब भैया एक ब्रोमफिस क्यूबान के न जाने फरकेर के लायक हमारो तो मार के पेल भागल भाई, गैली सिपाही में नालिश कर ली, सिपाही बोले कहे दौराई के पकड़ ले, हम बोली ओके पकड़ अब छोड़ी फोड़ी भोग दे भैया हम हुए रह जावे बेतरे हम कुछ ना बोली। जो सो इस सुरीनाम में से अनफेलखाई आज तक कुछ ना भले भैया आन किफ्त कर ली है वो तो बस कादक हुई ये हमार बोरक औरक सब लाश हुई कि भैया जो हीरो तो हो रहा मार एक बॉस हेलमाल क्लार में से एन क्यूबाने हैप्पी हील फिन इन सुरीनाम जोन सबन हुआ परे तने ब्रोमफिस चलावे सुंदर एनख एरफारे बकि हिया बातचीत हो रहा है एगो एक्ट पार के भैया क्यूबान एक्ट पार मतलब दुई परानी के बातचीत यहाँ हो रहा है चित्रा। तो दिलप अब देख का भैले क्यूबान के दोंदर दाख के बातचीत है कटली से काटी से ओके कोनो तो बैनाद पांडे राइसरी भी आ गया है, तो आपको राइसरी भी हम प्यार देते हैं यहाँ से हमारा प्रोग्राम में जुड़ने को। तो अब देखो क्यूबान के का भैले राइसरी क्यूबान के बुधवार के ना दोंदर दाख के भैया और बुधवार के रात के बान के समन कटली से काटी से ही बातचीत होएगा मोंगो स्त्रात में और खवापन द रोफर्स में कटली से काटी से भैया और कमोड़ी पे दुनिया ने कपाशों त्रय धल ले रहा कटली से रहा भैया ब्राउन फिश ओकर चोरी करके लेके भग गए क्वाटा में। तो भैया है स्वाइड आल और दोस्तों असाई तो सोशल मीडिया पे जइयो ती रखे रेंगवा के बड़ी आदमी गरियावे भैया आज सोशल मीडिया पे गर्मी तुरक में रहा और घर आवे है और मैं सुरीनाम इस नीत बेहतर खोड़ लातो दार इरलक सैन आलस वोर दूर। तो हमारा भैया फतिंगन रामराज भी आ गया है सुतमे से। तो भैया फतिंगन आप तो बहुत बड़का फैन है फे यहाँ पे के। आपको तो मालूम होगा कि इस वक्त सुरीनाम देश में बोले है अने सिमोंस बोले है कि हम कुर्सुआ स्टाबिल कर देली बाटी। मा कुर्सुआ तो भैया फतिंगर संतो की स्टाबिल कर ले रहा। तो कौन चीज तू स्टाबिल

इन सिस्टर्स प्रोयाक एगो भैया सूरीनाम में कहीं एगो सिस्टर प्रोयाक है परमारिबो में त यहां बताए गए भैया वहां पर दुई आदमी दी ट्वी ताल वॉट इरफान फरता मंस पर्सन दिन दोपहर भैया पिस्तौल लेके दागी से दुई गो दागी से भैया जेकर पेट में लगल है और जेकर पेट में लगल तो अब तू जाने जितना और खान है तो वही बा ओके ले आई कि सेवन सीकन हिस में धरी से एट फॉर लूप को ऑन द सुक फॉर द पुलिस इज नॉट फॉर gekomen दैट द ट्वी फरदाक्टन इन इट फॉर vermoedelijk zaken dienen met een slachtoffer. Toejanta, deze baat is Cubaan ke. En na khali Cubaan ke, dosto, aur samachar, aap log ko hum bataenge. Ab dekho, football weika hoi bhai, sab koi lobby kare hai weika. Ma weika me saban bole hai, jogi bole hai, rakh rengwa, bhaiya. 500,000 डाला भरी से और का बोले है का टेलीफिसी के एसेंट के का बोले है रक्त कीने के बारे में तो बोले पैसा कहां मिलल बोले ई सब ना बतावे है तो अब गैगरी रसलान एकर बारे में बताई से बतावे यहां पे कि तोरिया कैसे है दोस्तों गैगरी रसलान यहां बतावे कि तोरिया कैसे है यानी कि वो जो 450 यानी कि फीफा के पैसा भर के रखेरिंग बताल द हेल ऑफ अन फीफा लाइसेंसी फॉर वी का आइसेनिंग फियाद ए बोले आधा है तो जब पूरा रह तब तो हो जात भैया ना फिर तब तो 1 मिलियन डाला हो जात भैया 1405 तक बतावे हियां रखेरिंग साल एसटीफे बोले फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग देबे फॉर लीडर फीफा लाइसेंसी के बारे में और बोले है फीस प्रेसिडेंट जॉर्ज रसलान बोले है openbare vergadering met nationale assemblee mee. Volgens hem zal de overheid de helft van de kosten voor haar rekening nemen terwijl STVS het resterende bedrag via sponsoring moet zien op te brengen. Toen ik erbij met Jogi bole raak kan je sponsors het doen verwaven. De abjai ke Rusland hier betawe he ki aadha paisa STVS zelf sponsors se khojiga aur aadha paisa rekening bhariga. To hier bataya hai gaf aan dat de kosten van de uitzendrechten dit jaar naar verluid ongeveer $450,000 bedragen. De regering heeft volgens hem besloten STVS opnieuw te ondersteunen. Tussen naam met paisa na hai kaas me bhaiya. Aur ka bole hai ga. Admi Jeroen mangi voetbal dekhe bhai. Dat is ook een recht op alle burgers. Die een voetbal mangi dekhe. To ye kaam to chahi ho ek. Lekin probeer. Dit via de sponsoren te halen mensen. Niet hem lukke staatskas is al heel erg dagmang bhaiya. Aur elke centjes, elke dubbeltjes moeten omgedraaid worden. Kijk, kahan hem dee aur kahan na dee. We weten allemaal hoe die dingen van elkaar zit bhai. Tulun to jano ekar bare mein. Ab janta hem jai aur aage. और आगे जाए क्यूबान से लेरलिंगन ऑफ स्कूल अब क्यूबा के बात जो हो गए है तो यह बताए कि क्यूबा के लड़कन आजकल सूरीनाम में नीदरलैंड से जा सी के भैया हाँ है अंडरवेज सूरीनाम इज नीट फॉरबराइड ऑफ द कॉम्स ऑफ क्यूबान से किंडरन दी ग्रोथ दे सुंदर फॉरब्लाइव डॉक्यूमेंट सूरीनाम वोनन एंड टाइस आइसलेट स्पैनिश स्पीकन सिंस 2020 क्वाम नेटो उतरा ढेर लड़कन आइल है और घरे सेवन स्पांस पड़े हैं और ये सबके चाहे जाए के सूरीनाम के स्कूल में भैया लेकिन उस सबके घरे पढ़े और सब एली खाल ओले भैया तो कैसे जाइए यहां बताए गए हैं यहां बताए गए हैगा स्पांस तालक केंद्रन और बोले हैगा ऑन द स्ट्रीट Hoogdorp leerkracht op de basis van bestuurslid van de vakbond Wisa Stree. Ke bare mein hai तो हमारे प्यारे प्यारे जनता आप लोग को हम और आगे अपना प्रोग्राम को बताते हैं अब देखो भैया यहां पे हम बोले तरी कुछ बैतलान के बारे में बताई तो लोग जानो रोमेनिया में भैया ड्रोन गिरल है जहां आदमी रहे है कुमार शिवलाल आपको हम स्वागत करते हैं तो ड्रोन गिरल है रसलान दागत रहा ड्रोन
उक्राइने पे जाए के गिर गए है एगो फ्लैट पे और है रोमेनिया में और रोमेनिया कौन चे भैया उन्ना फोलंत

के आदमी है। अब एक बारे में बारा जुगु जुगु हुए। अब रोमेनियो बोले हैगा कि हम लोग के नाफो लांदे चाहे बसकादक करे के बाकी रसलान ना गए और लोग आउटफोर करे। रोमेनियो से ऊंचाई के गिर गए है एगो ड्रोन जो उदागे बांगत रहा जाए के उक्रेन पे। तो एक बारे में क्रेमलिन मॉस्को से और बोले हैगा बैतलांस साक मारिया सागारोफा रसलान के रोमेनिया फरक्लार द सुख के रसलान के कौंसिल में तो पर्सोना नॉन ग्राता एंड स्लोट एंड कौंसिलात nadat een volgende Roemeense Russische drone had geleid tot brand in het vlak en nabij de grens met Oekraïne. Obolehega drone incident als een ernstige en roekeloze escalatie van het Kremlin. Het land zelf kondigt aan nog vrijdag te investeren in betere droneafweer. Daarvoor wil het geld gebruiken van de Europese zeefondsleningen. Dus Roemenië of Rusland via Tolonja, Roemenië of Polen Tolonja een grens beheegaan. En dat zijn de risico-wekker maar mee. De Rusland zegt snel met tegenmaatregelen tegen Roemenië te komen. De opkomende maatregelen laiga op ik erbij mee. Jaisi rega aanplukko hem. Betaaiinge Zelensky beskulde Rusland van drone incident van Roemenië. Ke baare mee. Hamare janta. Ab dekho bhaiya hum jai hai Japan ke. Suriname mein bhaiya Japan ke auto bhar ge chalo na pare jaane hai. Kai rakam auto sab Japan ke auto chale hai. Ek rahi self ko Japan se auto mein se stevige motor. Bolie Johnny reclame kare nahi mat dat is ook zo dat weten we allemaal. अब हुआ के जनता जापान के बोले है अफगलोपन पांच बरिश में बीते हुए पांच बरिश में 2.5% बोले हैगा अफगलोपन बेफोल्किंग फॉर जापान इस अफगलोपन फाइव यार में 2.5% अफगलोपन जनता कमती हुई के 2.5% और बोले दैट कोम एरोब नेर कि फोरक है यार 3.1 मिलियन मिंदर मेंशन वोंडन इन 2020 एंड grootste daling sinds Japan met volste stelling begon in 1920. Toen jaren we India halker dus Japan ke bhaiya India met aur jada admi hoi ge hai. Japan ke bevolking bole hega 128 miljoen mensen na 2008 me ya bataye gaye hai aur bole il saka hue admi en hua pe aur toen jano ho bhaiya baby jo hai vorige jaar 705809 babies geboren bhai la 1,6 miljoen admi maral ha. तो ज्यादा आदमी मरे दाना बेबी खबर हुए तो बढ़ंती जो देश के उसका हुई ऐसे पंद्रह सौ ब्लाइड दर या पांच तो इधर इसे दरियन ट्वेंटी फोर एंड दर्द ऐ फाइव सेट्स ऑफ प्लसेस बस्तों दाना सो असर ओक एंड तीन मेंस एंड तख्तक यार ऑफ ओडर तो बोली कुछ जापान के बारे में आप लोग को हम बताई दी कि तोरिया कैसे है भैया कि जापान में आदमी कैसे कितना जनता हुआ रहे अब भैया तमाशा देखो तो लोग जानो है ईद उल फित्र रहा और का बोले ऑफर फेस्ट रहा आप सबको बधाई हो मुबारकबाद देते हैं हम यहां से लेकिन ऑफर फेस भी भाई ले पूरा दुनिया में जहां हमारा मुस्लिम भाई बहन रहते हैं और जब वहां पे अब ये बात हो रहा बांग्लादेश में तो बांग्लादेश में भैया सब एक भूल के लेकर बेफल के लेके गए और ओके स्राक्ति करे मांगी भैया तो वो बेफल वहां से भागल है भैया वहां से वो बेफल भागल है और बेफलवा बहुत मोई लगे बेफलवा देकर भैया ओकर बार और जितना है जो आपने सोशल मीडिया पे जी तो देखियो ओकर नाम सबन धरे से का डोनाल्ड ट्रंप लगे भैया ओकर बार और सब बगलिया में ऐसे झारल है हाथ दी मार ए फ कैकर और ओकर नाम अल्बिनो बेफल बांग्लादेश में और वो भाग्य है तो इतना मोई लगे वो बेफलवा मतलब वो बुल जोन है हम लोग का बोले लोग के भैंसा बोली ना मेरे ख्याल से तो ओके सबन बोले ओकर गटाई ना काटीगा तो ओके ले जाए के को धीरन तैन में धर दी से बोले दा दौर से ब्लोंदा हार डोनाल्ड ट्रंप वर्थ खनुम ओकर नाम बेफलवा के धर दी सबन डोनाल्ड ट्रंप भैया प्रेसिडेंट जो हम लोग के अमेरिका के वन ओकर बरवा परसीस ओइसने लाल लाल बगरियाम ऐसे झारल है तो
कुमार शामी भी आ गया है, आपको हम स्वागत करें, चांदनी जितन भी आ गया है, मतलब कि राकेश आ गया है। हाँ तो राकेश जी आपको हम स्वागत करते हैं उत्तराखंड शहर से मेरे ख्याल से। हाँ तो यहाँ बताए गए है कि ओकर गटई ना काटिस अब बांग्लादेश के रखेरिंग का करी से ये भैंसा के ले जाए के दीरन तैन में धरिस की तुलन एके काबुल है अने अने पोसो फॉल्क मिर्धा है ते दीरन बिसोंदर सख्त अर्धक करैक्टर द ब्रूर फन द मिरांडा बदाख द बेनाम डोनाल्ड ट्रम्प ओम दैसे कैप्सूल एरग लाइक ऑफ दैट फ्रॉम अमेरिकनस प्रेसिडेंट अ 680 किलो केबा वेगन द बफल werd eer deze week verkocht om donderdag geofferd te worden tijdens de offerfeest. Het is moeilijk om afscheid van hem te nemen, maar een offerdier is voor de offerfeest. We zullen Donald Trump voor altijd herinneren, zei Mirda tegen de krant. Maar op het laatste moment werd het dier gered van de slag. Volgens de Bangladese minister wanneer donderdag tijdens de offerfeest zoveel mensen op de buffel afkwamen dat het niet meer veilig was. De Bangladese overheid heeft de koper van Donald Trump terugbetaald en het dier is momenteel in de dierentuin van hoofdstad Dhaka. Ja, aanvloon je joh, ja. Daar gaat het, jeroen je joh. Aan de jane Bangladeske. Donald Trumpke, dikke. Je baat he, hamare, pjare, pjare, janta. हम और आगे को अपना समाचार लेकर चलते हैं। ताजा ताजा ताजा ताजा खबर भैया, घर में सुखना है सुरिनाम देश में, घर बैठे सब तो के मार पीट के लूट लेवे भैया, लूट लेवे है। यहाँ पे देखो एगो जगह के नाम है बेला दोना स्ट्रात, सुरिनाम देश में है, और वहां पर कौन चिलेगे भैया, चर चर लुटेरा। हाँ रात के और गैल 1000 एसआरडी लूटी से भैया, तो चार मिला कि कई मिला रहा, कैसे बटिए पैसा, और एगो में मोबाइल टेलीफोन, और बोले हैगा अदमिया बोले फॉल्कन्स एमका हाथ है नेचर एरफ, जैसे वो घरे गैल है उतरे में चार आदमी के अनफाल करी से पिस्तौल लेके बदरेख करी से, और करतास लेके स्पिलर है, ओए मैं खाली 1000 रुपया पैसा रहा भैया, 1000 रुपया में तो हुआ का बोले हैगा कौन ची पहिए भाई, बाकी उतरा बड़का ऊपर फाल सबन करी से पिस्तौल ले।

एगो बहुत जबर बोमा मिलल आना कोंदा ना लाउलाओ चीज है गा बुद्धू चांदनी जबर जस्त तू जाने सरनामे बूढ़ा भाई पानी इतना बरसल है चारों बगल बूढ़ा है ता जनावर अजगर जितना चीज है सब अपन होल छोड़ छोड़ ऊंचा भगे है तो यहाँ बताए गए है यहाँ बताए गए है सूरीनाम में बरखा से गो वो वेक है वहां पर जहाँ आदमी रहे है जबरदस्त बोमा हुआ गईल है भैया और इतना भारी बोमा हुआ गईल है रेप्टिलन खान तैन स्वार रिकल फाक ऑफ द सुकना द्रुक एंड फेल का प्लेकर यहाँ लिखल है अपना लड़का के बचाई के रखियो भैया औरतियों के पकड़ के बैठियो वन बोमा ना देखे ती लड़का है कि कौनची है मुर्गी है के डुक्सी है ओके जब महकल ओके जब महकल तपू तो के लपेटी एगो खराफ मशीन से जे के सब बोले है पकलेन ओसे सबर टांगी से हम खुद इतना बड़का बोमा ना देख ली भैया बहुत जबरदस्त बोमा है और बताए गए है द साम लीफन वर्ड आर्टिफिशियल अलर्ट ब्लेफन में से फन दिस सोर्ट अन रेप्टाइल बेस्ट में से आप लोग को ले जाए तेरी कालम की ओर हाँ कालम के संगे भैया बारा छिछा के लेदर है नानी वो छिछा के लेदर है भैया कभी देखियो तक कालम में हाय तब उस सब के सूरीनाम में सांदराई पे देखिए फरकेस ले दे न जाए के कायन में उतरे तक गायना में अब दूसर चकलस भइल है नानी दूसर चकलस भइल है और वो बताए गए है कि कालम के बोले तेलवे ना पाई सरनाम में भरे के केरोसिन तो बोले वो उड़ के गईल है फ्रांस गुयाना में भरिस तब उन्नीदलांतर खाइल इसके बोल पे भैया ये बात बतावे है कालम अब सूरीनाम के हुआ पे सब संदराई के आदमी ऑन द सुख कर की चीजुआ कैसे है तो बोले कालम बोले झूठ बोले है बोले अब दैलक आहित आइले ब्रांस्ट ऑफ क्वेस्टी रोंड कालम जो योहान अदोल्फ फेंगल इंटरनेशनल लुखाफन सूरीनाम में बा मंगलवार के कालम जाए के फ्रांस गुयाना में भरी से तेल तब उजाए के उड़ल है और मेल पे बोले सरनाम में बोले तेल ना है तो यहाँ बताए गए है फोल्कस वार्निंग मस्तास ओली डायरेक्टर एडी फ्रांकल बोले ये बतिया नकलोप होएगा और बताए है कि चीजवा ऐसे ना बोले कालम बोले पैसा ना भरी से द क्वेस्टी ड्राइव फॉरकल फ्रैंकल ओमन बताले खस्किल तिस कालम एंड गो टू द डोंड द डॉक्टर मास्कपे फन स्टास ओली वार द फ्लिक मास्कपे ब्रांस्टॉफ अफनी फन गो टू बोले बेहर बताले फन अ ब्रांस्टॉफ रेकनिंग ओक एन फी नेम्स द स्लख एन लुफ्टहाफन एंड ड्राग हेड बद्रा फॉरकल्स अफ अन लुक्स तो पैसा ना भरेला भैया कोनो फेस से तो ई कालम इतना झूठ बोलिस भैया लेकिन सच्चाई कैसे है कालम हिव गो टू इन मिनिस इन कोर्ट खदे खदाख फार द सात दिन फ्राइडे 29 मई दौर तक खान तो बतावे कालम सऊदी फी अलांगर तय नहीं बतालन दार दो हिव गो टू हेड बद्रा फॉल्कस फ्रांकल मेर ना अन यार फोर गेस्कोटन इन मिडल सो द अख्तरसन फ्लिंग सेन opgelopen en wil go to dat KLM eerst betaald voordat het brandstof wordt geleverd. Maar zo is het mensen. Toen mange he, ka bole he ka paisa na bhare, ta ka mua thoro bani KLM to hum log ke price chadhai se, ta ka hai na jai ke Surinam ke tel ka paisa bhare aur janta pe laen. Aap log ke sain malum hai bhaiya hum KLM ke bejitti na karila, mar ek pas self me khama. Miskin hai wo yuli ok me khama. Jab tu KLM mein baithiyo bhai, और हुआ पे तरी से इसके फॉल पे जो फरतराखें हुई है तरी से लाती हुई है जैसे कि उके उड़े के 12 बजे मान लिया जाए अब 12 बज गए ट्विन तक मनीतो ने ऊपर हुई है तब जाने का बोलेगा बोली पासा चिरुआ कोफरवा भीतर हम आई गए म पासा चिरुआ पता ना कहां जिस वजह से इन बीच से कोफर ट्रक चला एक हैपन पार कर मेकअप ऑफ दैट वार इज मेंशन ऑफ वेट वे नीड मैं आज एक सिचुएशन लेस ओवर द केरोसिन प्रॉब्लम फन कालम जो उल्कलिस की सरनाम के तेल ना है वार फन द सिचुएशन दैट कालम नीड बताल था देन खलूफ कालम ही मिंदर नि मेंशन कालम खा
elke keer draait diezelfde plaatje. Die persoon is nog buiten, die koffer is ingeladen en die koffers worden weer teruggezet, waardoor wij nu een beetje laat zijn met kuilen. Dit heb ik niet één keer, diverse keren dezelfde bandje draait daar mensen. To Ursula Bagus Samuj bhi aa gaya hai. Auro yani Rakesh Samuj ke niche Ursula Bagus Samuj bhi aa gaya hai. To aapko hum yani Pandit Tilak Dhari Vek se swagat karte hai yahan Den Haag se aapko. To janta aur ab jaila Chinaini ke aur nani. Ciao. चिनैनी के ओर जाले भैया, चिनैनी के ओर हम जाते. बोलिए जॉनी, चिनैनिया नासी बनाई इसकी बामी बनाई से. चिनवा चिनैनी 40 बरिस के चिनैनी भैया बातचीत हो रहा है. वोल्फ्राम स्ट्रांत के बातचीत हो रहा है. वोल्फ्राम स्ट्रांत के बातचीत हो रहा है और बताए गए है. बोले एगो टिप क्रिक द चिनई से फ्रोन और फिर बत्रेफन द एड्रेस अंडर दुआंग वर्दन इन खसेद फॉर प्रोटेस्टुए भैया. एगो टिप सिपाही के मिलल है कि वहां पर प्रोटेस्टुए के काम चिनैनी करे है. ये बात हो रहा है वोल्फ्राम स्ट्रांत में. भैया लो ना जाइयो बारा एच होई के सरनाम में. जूता पहन के जइयो हमारा भैया लोन. सूरीनाम में बहुत जबर हाई फीरस हो गए हैं. हमें याद हुई कि हम बताएला बीते हुए दिनों में इसका न्यूज हम पठारी बुद्धू कान खोल के सुन ले. ना जइयो जाची रही लगे हम अदरस वहाँ देला वोल्फ्राम स्ट्रांत में भैया. वहाँ पे मेंशन हंडल हो अतरा चिनुआ के तत्तेप मिले है. तब बोले अब बत्रे फंदा अंदर अंदर दुआंग वर्दन इन खसेन पोर्टफोर प्रोटेस्ट twee naar aanleiding voor dit informatie werd een inval uitgevoerd waarbij twee vermoedelijke slachtoffers werden gevonden. Bhaiya te doei mila hua pe doei go au chowri ke natuurlijk paisoi. Op basis van de aangetroffen bewijzen verklaring van de twee slachtoffers werden verdachten en afstemming Surinaam se sipahi ook lege hai. Ab gaile dekhe ki ke oke smokal karke lai se aur kaise turiya भैल है हमारे जनता. हम सोची थे लोग के गनवा सुनाई देना. तो गनवा जो सुनाई देवे

और दोस्तों ये गीत बहुत लंबा है, इसीलिए हमें इसको तरी से रोक कर अपना समाचार को आगे लेकर चलना है। तो टोनी श्री आपको भी हम बहुत प्यार से स्वागत करते हैं। मालूम नहीं कार में है कि बस में है, लेकिन है रेडियो फाउन पे। तो दोस्तों हम चलती है यहाँ बातचीत हो रहा भैया, सब कोई बोले पड़ोसी नैली रघुनंदन महावीर आ भी आ गए हैं। तो नैली सब कोई बोले हमारे पड़ोसी भैया, अच्छा पड़ोसी बोले बहुत खुश नसीब वाल को मिलता है। हाँ जेके खड़े वही मोई बिरमान पाई बिरफराव पाई पाई के लिए करो खच्चड़ भैया एंट वे दरी लगी देर बेल दबावे। लेकिन यहाँ बातचीत श्री नाम के हुए है, यहाँ बातचीत हो रहा है श्री नाम के लुका स्त्रात के बातचीत हो रहा है। यहाँ पर जब तू बाजा जोर बजाइयो भैया देर बेल दबाई पकड़ ले रहेगा भाई, ये कुछ रही डायरेक्ट क्लाक्त। तो मोटर फिच पे लोग जा रहा है, फिर भी रेडियो फाहन को सुन रहा है, दोनों हाथ से स्टीयर को पकड़ना जोर से। हाँ और यहाँ बताए गए हैं एक 25 साल के फैफन ट्वें तक यारक क्लेरेंस है। बतावे गए सूरीनाम में भैया एक सिपाही पकड़ी सी का कर ले रहा भैया, ये का करेला लुका स्त्रांत में। बताए गए है ना एक नाई कई बार भैया, वार है फोकस ऑन की हेयर हाल दल फॉर एनस्ट को ओवर लॉस एंड बदरेकिंग ही फॉर सोरख पाए सूरीनाम देश के बात है। बोलिए दमिया दुरुक्स फॉर सलाफ बिरमनवा हमारा बा, तब तो और गड़बड़ भैया जब तू दुरुक्स पीयू के नशान रही है तब बताए से फरकलाल अल खरे मत हिंदर तो अंदर फिंदर फन हार बिरमन क्लेरेंस फोकस हार इसे दुरुक्स फरसलाफ्ट। अब बताए है सो ईर्दर हैवन खदरेगत हर वोनी इन ब्रांत स्टेकन दाना सो है यार एन हर गजीन स्टेलसलमातक हैवन लास्ट गफालन एन बदरेगत मेंसे। तो ये बात है ये जिनकी जाए के अपन बिरमान के बदरेग करत रहा भैया, कई बेर बदरेग करी से और लड़त रहा उसे जो कर सलाब कमरा में भैया जाए के और रोका बोले एस्कालेर करी से इसे होर द फरदाख्त तकीर खान वरना से स्लाप की आमर में घुस गए भैया। तो जिनकी तोर बगल में है कोई ना मांगे ऐसन बिरमान भाई, सब कोई मांगे हमारे बिरमान नेचस रहे। बोलब की बीर फ्रो हमें सुकरू लेनी कर दिए तो के बोले के कमवे नोलाए के तो के मीठा मीठा सुकरू रे अगर देखो चुम्मा भी दे दे मीठा मीठा दोस्तों ऐसन बीर फ्रो चाही। और बिरमान हमारे पेड़वा झुक गए तेरी काट दिए ना बिरमान, बोली बोली तो के बोले के काम है ये ना हम अपन काम छोड़ के आयला करे तो ऐसन बिरमान ना चाहेगा तो नहीं। तो ऐसन बिरमान नसीब वाला के मिले भैया, ऐसे थोड़ो मिल जा। आप देखो शाया का बोले है ई मेक्सोन शाया हाई ध्यान है भैया माँ का बोले है मिनिस्टर फॉर यूसीसी एंड पॉलिसी के और मनोरथ के हनीश मनोरथ के बोले आज फिर है और एक कोई मंगबे ना करे भैया वहां पर जेन साया मिक्सोन का बोले है बोले 10 गो पिकअप बोले हम देती लांटी के सीकर उही के मारे पिकअपुआ खातीन के माता अश्विशेर बनावे। तो हाइटियान के बोले रहा बोले 10 गो बोले 10 गो बोले पिकअप हम ले इफर करती आंसरी नाम से ओवर हेड के सो दैट वेरक्स हम ही इन बेहतर आउट को फूड कॉर्नर वार्डर एंड हमेश का दारफान ओक सो कुन प्रोफिटेरन निश्चित है दारफान daarvan af vanwege de negatieve uitlaten richten hem naar dat betekent bekend werd dat hij adviseur van Jusman minister Haris Manoret bolle ki ap bolle hem pick up na debe omdat ja adviseur na bati admino klak kare te bolle hem na debe das go pick up to ta Haris Manoret ke ise bolle iste ta lalish deshi bhi Haris Manoret ke ki to ke hum 5 go pick up debe hame to bana le apan adviseur ta janta hua pe bahut critically kita bole hem pick up aan na debe het soort stoort de voormalige VHP sponsor vooral dat hij in een DNA zwaar is berkisteerd. Al bole terwijl hij juist iets goeds voor het land wil doen mensen to bina bhaiya chara ke machri na mile hai
भैया 100 मार पिकअप हुआ तो थोड़ो दी है, 5 गो पिकअप दी है तो तू मंगिए ओकर 10 गुना लांटी से लेवे। और ना ऐसे जमाना है ना भैया बुद्धू, 100-100 में कोई एक झापड़ ना मांगे मारे तो 5 पिकअप दिए साया, तू सोचा हाइटियान हम लोग बाटी का, ना ना ना ना। बोले आलस हीफ्ट, आलस हीफ्ट एंड रीड द मेंशंस ऑन द मिनिस्टर हैड वेट ए कैप 26 पिकअप्स जी ऑनderweg zijn en ik zou daarvan 10 pickups aanleveren. Bullen ze mochten ze nemen en wanneer het geld er is, konden ze me betalen. Ook al is het na 5 jaar, maar door die jugu jugu ga ik je eerlijk zeggen, dan mi abi kanami ede, zei Shaya in de interview. Bole hum na debe. To ye baat hai, Shaya ke baatjeet ho raha hai. Haitian ke bhaiya hi kahan itra paisa paise. Ab ekar batiya chahi on the suk kare ke to. Lekin hamar Suriname mein kahan hai fiat bhaiya. Glat hai, baki koi obdraag na debe hai. Ki isa manayyan ke tu jatari on the suk kar ki tu. Itna din se deswam baate, kahan तू इतना पैसा पहले है, कैसे तू इतना मोनी मांग हुई गेले, ना खाली एके ना खाली एके मा और तो के चाहे अंदर सुख करे के चीजवा कैसे है। तो ये बात है हमारा प्रेसिडेंट सुरिनाम के जेनिफर सिमोंस अपन पूरा दिल खासी लेके ब्रासिलिया में गए भैया, अपन आदमी के भी ले गए हैगा। बोले ब्रासिलिया से लुख मार अफगानिस ना ब्रासिलिया फॉर ऑफिशियल बसुक है सुरिनाम से स्टेटसोफसाल आंसर ter even eens officieel bezoek brengen aan de Dominicaanse Republiek. Toen waar heb je ga? Glenn Gerling zo kan het niet begeil he. Delegatie leke. Abole in welke hoedanigheid hij aan de reis deelneemt is vooralsnog onduidelijk. Waarvan Simons bolle raha. Bolle ook er het niet doen he. Ik kom een regering met deelnemen nakker he. Maar toch ook er zijn ja he. Maar ook er het niet he. Ke ticket bhare ke na bhare he. Ek er baare mee kuch pata na he. Aap loon jano bhaiya ego hin हिंदुस्तानी भैया, एगो हिंदुस्तानी बस शफेर है, स्कूल के लड़कन जन मोई ना रहा, बेमरिया तरी लड़कर रहा, ओके जाई के बतस्त करत रहा, एगो ड्रीम फाइव तक या रखे हिंदुस्तानी बस शफेर है, और एके भैया होफ में गईल है, एके मांगत रहा, ने छोड़वावे, और ये आफोका चंद्रा अलगू बोले दार्मी ब्लेव दे एदे बस लेचिंग वार में अनहोदिंग एन फर्सीकिन स्टेलिंग फन फर्दाख्त रहमातक वेर्दन फर्कलार फॉली in stand. Of bole hega 20 tarik meike oke chama pakadi se jema an kind in zijn bus zou hebben betast. Het verzoek op basis van artikel 54a wetboek strafvordering was eerder al door de rechtercommissaris afgewezen. Daarna stelde de raadsvrouw hoger beroep in tegen de buskicking. तो ये सब बात है हमारी जनता। तो हम एक दो समाचार और आपको सुनाएंगे। अब देखो भैया फोरख रखेरे लेंड एक बार रखेरे लेने कल रहा 5 वर्ष में 2.2 मिलियार्ड अमेरिकन डॉलर और एक वर्ष के भीतर में 1.8 मिलियार्ड लेनी 10 महीना में करी से भैया फोरख रखेरे तो की 2.2 मिलियार्ड लेनी कल रहा 5 वर्ष में और यहां सिमोंस के रखेरिंग और रुसलान के रखेरिंग 10 महीना में 1.8 मिलियार्ड लेनी कर चुकल है। एक बारे में मिनिस्टर आदलिन वेमर मान फॉर फाइनेंस इन प्लानिंग सो यश कमेल इन द नेशनल असेंबली टेंस द बहांडलिंग फॉर अ वेजिंग फॉर द कंपैटिबिलिटी विद 2024 में मिनिस्टर वेमर मान गिंग फर्दर इन ऑफ ऑफ द लीनिंग एंड दी डोर दिस रखेरिंग सेइंग गनोमन। तो ये सब बात है दोस्तों। और यहाँ पे बताया द स्टिक्टिंग सिंगल मॉडल प्रोजेक्ट सुरिनाम ओवर द मेंस्ट्रुएशन के बारे में बोले हैं। मेंस्ट्रुएशन प्रोडक्टर फॉर मिंद्रन स्कूल एंड वर्क फॉर सेम ऑन द फ्रॉवन एंड मेजर्स इन सुरिनाम। तो भैया रंजीत लक्ष्मी नारायण सिंह भी आ गया, सीता दिहाल भी आ गया है, टोनी इस्त्री आ गया है। इसी प्रोग्राम्स एक गिरके से आज हम अपना प्रोग्राम को खत्म करेगा। नली रघुनंदन भी आ गए हैं, धर्मेन इसरी राजराम लगन चित्रा अवतार दिल बुद्धू यफतिंगन राम राज रंजीत राजा अयोध्या टोनी इसरी चांदनी जितन
कुमार, शिवलाल, ये सब हमारा प्रोग्राम में आए हैं। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में भाग लेने को। आने हुआ हफ्ता में हमारा तुम्हारा मुलाकात होगा। बाय बाय, नमस्कार।

और क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर तुम लगती हो, के बाद समझाते हैं कि मेरे नसीब में क्या है यारो।

और मेरी नसीब में तू है ते नहीं। दोस्तों कुछ रीमेक सॉन्ग आज हम आप लोग को भिन्न सुनाएंगे, ओल्ड एंड गोल्ड रीमेक्स में कैसे लोग गाए हैं और मिसी को बजाए हैं, तो हम और अगला गीत की ओर चलते हैं।

0: पुष्पेंद्र इटावा।
1: और दोस्तों रीमेक सॉन्ग के मूड में आज है, तो हम चलते हैं। तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, और यो अरे भैया तू तू है वही जो वही दिल से जिसे अपना कहा। तो ये गीत तो हम प्लेयर पे रख चुके थे, लेकिन अब पता है कि कुछ और चलेंगे। जैसे हमने यहाँ देखते हैं कि ये गीत में कुछ तरी से कुछ आ गया है, लेकिन हम जहाँ काम होता है वहाँ तो कुछ होता है। सुना जाए।
2: 0 2 2 6 4 0 8 9 5।
3: हेलो,
2: अकेले हो? दोस्ती करोगी?

जिसे अपना कहा हमारे यारो और कुछ रही में एक सॉन्ग आप लोग को ये घंटा हम सुनाएंगे। तो यारो इसके बाद हम चलते हैं एक और दिए यानी कि रही में सॉन्ग की ओर।

और उड़नी उड़ के जनचियो तो माँ कुछ और मजा है कि सजना है मुझे।

भी हो दोस्तों, आंची अंप को झुमाएंगे और नचाएंगे भी हम और जगाएंगे भी हम।

और दोस्तों आप लोग को कुछ फिजी का और कुछ और जोंग हम जुना दे है तो आज हम आप लोग को कुछ एक घंटा बॉलीवुड सॉन्ग सुनाएंगा और जाने अगर ये आप नाचना चाहते हो तो झूमिए और नाचिए। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं।

और तेरे लिए और रिमिक्स सॉन्ग, और आज हम आपके सुनाएंगे और रिमिक्स सॉन्ग के बाद हम चलते हैं कुछ ओल्ड एंड गोल्ड रिमिक्स भी हम आप लोग के लिए, और लाइए गुनगुनाइए झूमिए। ये फूल है

साही दीवाना और दीवाने दीवाने में क्या क्या हो जाता है यारों। और उसके बाद हम चलती है सैटरडे नाइट की और रेमिक्स बॉलीवुड डीजे सॉन्ग।

फाहम के हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 3 2 6 9 8। फाहून हिंदुस्तानी राज्य।

मेरी सनम है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से आप सुनेंगे टुकड़े हैं मेरे दिल के ए यार तेरे आंसू। आपको सुनाने वाले हैं मोहम्मद रफी जी।

अभी आप सुन रहे थे टुकड़े हैं मेरे दिल के ए यार तेरे आंसू फ्रॉम द मूवी मेरे सनम से हमने पेश किए हैं, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, मोहम्मद रफी जी आ रहे हैं प्रोग्राम में आशा भोसले के साथ में।

अभी आप सुन रहे थे फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, मोहम्मद रफी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी ये रात फिर नहीं आएगी। गा दीवाने झूम के, फिल्म का नाम है फ्लैट नंबर 9। इसी फिल्म से आपको सुनाने वाले हैं द माइटी मुकेश जी।

0: करना।
1: अभी आप सुन रहे थे गा दीवाने झूम के, रात के सोफे झूम के। मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। सोचा था प्यार हम ना करेंगे, ब्लफ मास्टर है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से आप सुनेंगे।

सोचा था प्यार हम ना करेंगे, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी ब्लफ मास्टर से हमने पेश किए हैं दमयंती मुकेश जी की आवाज में। लता जी के साथ में मुकेश जी प्रोग्राम में आ रहे हैं और गीत का बोल है, दुनिया वालों से दूर, चलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर। उजाला है फिल्म का नाम।

अभी आप सुन रहे थे दुनिया वालों से दूर चलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर कहीं दूर कहीं दूर। जिस दिन से मैंने तुमको देखा है इस दिल में क्या हुआ है, एक सपना सा जागा है। मोहम्मद रफी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं, फ्रॉम द मूवी परवाना से आप सुनेंगे।

जिस दिन से मैंने तुमको देखा है उस दिन में एक सपना सा जागा है। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी परवाना, से हमने पेश किए हैं मोहम्मद रफी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे। मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ और वो ये है कि जमीन वाले मायूस कर सकते हैं, जमीन वाले मायूस कर सकते हैं मगर आसमां वाला नहीं। चल मेरे दिल लहरा के चल।

चल मेरे दिल लहरा के चल, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी इशारा से, अभी आप सुन रहे थे द माइटी मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। मस्ती भरा है समा, हम तुम्हें दोनों यहाँ, फ्रॉम द मूवी परवरिश से हम पेश करते हैं लता जी के साथ में मन्ना दे जी प्रोग्राम में आ रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे मस्ती भरा है समा, हम तुम हैं दोनों यहाँ। मन्ना दे जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले थे। कोई कोई आदमी दीवाना होता है, फ्रॉम द मूवी स्वीट हार्ट से हम पेश करेंगे द माइटी मुकेश जी की आवाज में। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये है कि कदर वो होती है जो किसी के होते हुए हो, कदर वो होती है जो किसी के होते हुए हो, और जो किसी के जाने के बाद होता है वो पछतावा होता है।

द माइटी मुकेश जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे कोई कोई आदमी दीवाना होता है। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा नेक हमसफर है। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा नेक हमसफर है जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है, जो सिर्फ खुशी का मोल करे वो दोस्त नहीं सौदागर है। फ्रॉम द मूवी मधुमती से आप सुनेंगे

जो सिर्फ किसी का मालिक यानी जो सिर्फ खुशी का मोल करे वो दोस्त नहीं सौदागर है। नमायती मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी मधु मालती। जिंदगी की सबसे बड़ी हार किसी की आंखों में आंसू आपकी वजह से, और जिंदगी में यानी जिंदगी की सबसे बड़ी हार किसी की आंखों में आंसू आपकी वजह से, और जिंदगी की सबसे बड़ी जीत किसी की आंखों में आंसू आपके लिए।

जब आसमान शंकाओं से गहराता है, तब भी तुम्हारा उजाला जलता रहता है। जब मशीनें शाम को चुप हो जाती हैं, हवा हाथ अपनी भाषा बोलते हैं, हवा और पक्षियों के गीत के बीच तुम हर दिन फिर से अनेक लोगों की समृद्धि बिना शोर गढ़ते हो।

घोषाल और उदित नारायण आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा। वो हमसे खफा है, हम उनसे खफा है, इश्क छुपता नहीं छुपाने से। फ्रॉम द मूवी बेवफा से हम पेशकट है आप सभी के वास्ते और आपको सुनाने वाले हैं अभिजीत।

अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी बेवफा से हमने पेश किए हैं इश्क छुपता नहीं छुपाने से। एक और गीत हम पेश करेंगे फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा, इसी फिल्म से आप सुनेंगे मैंने सोच लिया।

अभी आप सुन रहे थे मैंने सोच लिया फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते हम प्यार है तुम्हारे फ्रॉम द मूवी। हाँ मैंने भी प्यार किया है कुमार सानू के साथ में अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं।

बार शानू के साथ में अलका यज्ञिक आपको सुनाने वाले थे हम यार है तुम्हारे फ्रॉम द मूवी हाँ मैंने भी प्यार किया है। वो लड़की बहुत याद आती है फ्रॉम द मूवी कयामत से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। चलिए मिलकर सुनते हैं और आपको सुनाने वाले हैं कुमार शानू के साथ में अलका याज्ञिक।

वो लड़की बहुत याद आती है। अभी आप सुन रहे थे कुमार शानू के साथ में अलका याग्निक, आपको सुनाने वाले थे। भीड़ में तन्हाई में फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा से आप सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे भीड़ में तन्हाई में फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा। इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं आपके प्यार में हम सवरने लगे। उनका यज्ञिक आपको सुनाने वाले हैं।

के प्यार में हम सवरने लगे अलका याग्निक आपको सुनाने वाले थे। दिल मेरा तोड़ दिया उसने पूरा क्यों मानू फ्रॉम द मूवी कसूर से हम पेश करते हैं।

0: मैं सिमरन बोल रही हूँ। अपना नाम और मैसेज एक बीप के बाद छोड़िए, मैं आपको कॉन्टेक्ट करूँगी। थैंक यू।
1: हेलो सिमरन, सिमरन मैं जानता हूँ तुम वहीं पर हो। सिमरन प्लीज पिक अप द फोन, प्लीज सिमरन प्लीज पिक अप द फोन। सिमरन प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो।

अलका यज्ञ की आवाज़ में भी आप भी सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी कसूर से हमने पेश किए हैं दिल मेरा तोड़ दिया उसने बुरा क्यों मानू। क्रिमिनल है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए।

अभी आप सुन रहे थे तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। इस बार हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते फ्रॉम द मूवीज, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते गली में आज जान निकला। अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे एक बैठक गाना मैशअप द टाइगर्स, यानी इस ग्रुप का नाम है द टाइगर्स। हरीश सुखदेव आपको सुनाने वाले हैं एक और मैशअप। चलिए मिलकर सुनते हैं।

हरीश सुखदेव जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे एक मैशअप सुनने वालों। सोनिया सिंह आ रहे हैं प्रोग्राम में गिलबा का ग्याल।

सोनिया सिंह की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे गिल्बा का ख्याल। लीला एम आ रहे हैं प्रोग्राम में सुनने वालों, और लीला एम जी आपको क्या सुनाने वाले हैं, अब चोलियाँ भीजे।

अभी आप सुन रहे थे अब चोलिया भीजे पसीने बनवारी, लीला एम आपको सुनाने वाले थे। मलेशा से बॉल आ रहे हैं प्रोग्राम में साइड चेक।

0: What's that smart?
1: Where's what?
0: What's this here, so? Oh. Explain, Mark. Let me hear.
1: I can tell you the truth. You sitting? I had an emergency.
2: अभी आप सुन रहे थे मलेशा शिपोह की आवाज़ में साइड चेक रसी का दीनदयाल आ रहे हैं प्रोग्राम में बोले बोले हिरनवा

बोले बोले हिरनवा, हमको न मार, हमको न मारो जंगलवा में, रसिका दीनदयाल आपको सुनाने वाले थे। प्रोग्राम को हम आगे में जारी करने वाले हैं। सुनने वालों, पृथ्वी आ रहे हैं प्रोग्राम में, श्याम सुंदर।

पे सुन रहे थे श्याम सुंदर पृथ्वी की आवाज़ में केनेथ सालिक को सुनाने वाले हैं राधिका वायुली वेंगो।

करो अरे की दूर देश से आया अरे अपने ला

तो अपने ही अंदाज में, और ये दिल की बात है, कभी ऐसा कीजिए ना, हाँ, वही मिलेगा।

कलाकार दविंदर सिंह जी, दविंदर सिंह शिवनाथ, आप एक हिट सेशन 52 के माध्यम से।

आजमा कर कभी देखो ना। होने वाली यही है कि जख्म जब मेरे सीने की बाहर जाएगी, आंसू भी मोटी बनकर बिखर जाएगी। ये मत पूछना कि किसने दर्द दिया, वरना कुछ अपनों के चेहरे भी उतर जाएगी ना भैया। और यूं ही जो है खास आवाज जो है और देवेंद्र सिंह शिवनाथ मधुर आवाज

दविंदर सिंह शिवनाथ जी ने। और आप ही से कहता हूँ कि आई दिल मत कर इतना मोहब्बत किसी से, इश्क में मिला दर्द तू सह नहीं पाएगा, टूट कर बिखर जाएगा, टूट कर बिखर जाएगा अपनों के हाथों से। किसी ने तोड़ा ये भी किसी से कह नहीं पाएंगे, और इसीलिए आपको ये मैं सुनाना चाहता हूँ, आप ही ने बनाए हो तो देखो। साई जो लिए हो, साई जो लिए हो, हाँ फिर से, साई जो लिए हो तो नाचना पड़ेगा ना।

ये राज बतलाते चलो भौजी। कैसे बना है यही तो सवाल कर होता है ना, और जवाब सुनते चल दो। रास को रास नहीं रहने देना।

हमारी भाई जो है और खास कलाकार से ये नंबर सुन रहे हो, पाहुन पे आप चुन है, आप ही किससे जन है। हाँ दोस्तों,

है संगीत की कलाकारों दोस्तों, क्या कहूँ मैं, अपनी अपनी कला, अपनी अपनी पहचान। सरस्वती माता जो है इन लोगों के कंठ विराजमान कर रहे, विजाय विराज रहे, और जो है ये जिंदगी हमारी दोस्तों, उसके बारे में ये राजेश शिवनंदन क्या कहता है।

तो यही घड़िया यही पल जो है याद आता है ना यूं ही, और आपसे कह दूं, रजेश कह गया, मैं नहीं, रजेश संगीत में। हाँ भाई, इरेन डंकवेल यानी यू का

क्या बात है, आप ही बतलाइए इस कलाकार के बारे में। और मैं जो कहता हूँ, मैं आपका सेवक श्याम पूरन हूँ। हमारी और दोस्तों, वो खुद को फूल और हम को पत्थर कहकर मुस्कुराया करते हैं। वो खुद को फूल और हमको पत्थर कहकर मुस्कुराया करते हैं। उनको क्या पता, उनको क्या पता, उनको क्या खबर, पत्थर तो पत्थर रहता है और फूल ही मुरझाया करते हैं। दोस्तों, हमारी प्रिय खास करके मित्रों, पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के प्रोग्राम है और यह कार्यक्रम आप ही के नाम हम चला रहे हैं, तो उसे जानते हैं। और आज के कार्यक्रम में इसी अवसर पर दोस्तों, तो यूं ही आपके लिए मैं आप ही के नाम

वाह वाह वाह हो रहा, कैसे मैं उनकी तारीफ करूं दोस्तों, ये तो है और महान कलाकार, हमारे सुनाम के कलाकार जो है उस्तादों के उस्ताद राम प्रसाद राम खिलौन, कमाल की मोहब्बत की तुमने जान जान कहते कहते अनजान बना दिया दोस्तों, यूं ही बातें कहते हैं और ये कार्यक्रम जो है आप ही के नाम आपको, और इस बार

शाबाश शाबाश कलाकार हमारी प्रिय और दोस्तों, खास कार्यक्रम में जो ये नंबर मैं आपके लिए प्रस्तुत किए, यूं ही आप लोगों ने जो तार किए और मैं अपनी तरफ से आपको हृदय से फिर से धन्यवाद दे रहा हूँ। मुझे हौसला मिल रहा है आप जो साथ देते हो ना, खुशी है और ये पल जो है आपके साथ मिलके और बीत जो रहा है। आप ही की हिट स्टेशन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है और साथ देने के लिए यूं ही खुश हूं मैं लोगों से बतला देना क्या है फाहुन, कौन है फाहुन, तार के नंबर बतला देना 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
जो है इंटरनेट के जरिए से पाहुन एफएम पिंटनल के जरिए से, या तो हॉलैंड में आप रहते हो तो डी अबी प्लस दप रेडियो है, डिजिटल रेडियो है दोस्तों। और टेक्नोलॉजी आज इतना दूर जबकि पहुंच गया है ना। तो जिन लोगों के जन्मदिन है आज, जन्मदिन के अवसर पर बहुत से बधाइयां शुभकामनाएं, और यही हम चाहते हैं आपके लंबी आयु हो, मनोकामना आपके पूर्ण हो, जीवन स्वस्थ और सफल रहे आपकी जो है।

Van harte gefeliciteerd. Bedankt, shubhkamnaen. तो आपके जन्मदिन पर हम देते हैं खुशी के दिन है, समारोह के साथ मनाओ।

हर एक की ख्वाहिश तो यही रहता है ना, हमेशा साथ रहे। आयु तो होते हैं 100 वर्ष की, लेकिन ऐसा कार्य करते चलो कि हजारों साल तक आपको लोग जो है समाना जमाना याद करते रहे। हमारी दोस्तों वाहन पे आप चुने आप ही हिट स्टेशन म्यूजिक स्टेशन जो है, और हर एक कोई को एक सीखंद मोये दख कहते हुए फिर भी जन्मदिन पर बधाइयां शुभकामनाएं। अगर जन्मदिन है आपकी है, आज का दिन जो है खुशी के दिन, और जाकर मनाइए अपने परिवार के साथ, हिति प्रेमी ग्राम निवासी जहाँ तक हो सके, और जो है खुशी के दिन खुशी के पल आपस में बांटते चलो।

हॉलैंड पे रहते हो ना? हाँ हो रे, सोचो क्या से क्या हो गया है और यूं ही पैसा के बाद जब हो रहा है। तो शुरुआत में जब हम सुनाम छोड़ के आए हॉलैंड में, तो रिश्ता जो था है पारिवारिक रिश्ता जो है, कितना उसमें गर्मी था। आज क्या हो गया है, कुछ ठंडी पड़ गया मुझे मालूम नहीं, लेकिन यही कहना है कि परिंदे और इंसान को आज़ाद छोड़ दो, परिंदे और या तो इंसान को आज़ाद छोड़ दो। लौट आया तो अपना, और नहीं आया तो समझना कि अपना वो कभी था ही नहीं। दोस्तों यूं ही बात करते हैं और संगीत हम आपके लिए जो पेश करें खास के कार्यक्रम में पावन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम और आप ही के नाम। क्या करूंगे अब, मेरे पास आकर यही सबक जो आपसे करता हूं, क्या करेंगे अब मेरे पास आकर। खो दिया है तुमने मुझे बार बार बार बार आजमा कर, तो यूं ही ये सवाल आप ही से करता हूं। और जो संगीत है केकर नाम आप ही के नाम।

क्या कहूँ मैं और आपको क्या कहना, तारीफ करना ही पड़ेगा ना। ये यूं ही अनजान तो था जिंदगी में ना, इससे मैं एकदम से अनजान था। छोटी सी उम्र में ही दिल लगा बैठा थे हम दोस्तों, ये छोटी सी उम्र में दिल लगा बैठे थे हम। हमने क्या पता था, मुझे क्या पता था नशा शराब का नहीं यार का भी होता है दोस्तों। आपसे ऐसा कुछ हुआ है बतला सकते हो, क्योंकि

तो यही तो है पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो स्टेशन। स्टेशन द म्यूजिक स्टेशन तारक नंबर 07 3262 20।

हर एक काम जो रेडियो के सिरे कराना, जैसे कि खास फरमाइश, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह, आप कॉन्टैक्ट कीजिए फाह और हिंदुस्तानी रेडियो के डायरेक्टर से न्यूज सीफ तक 3 से 5 2 8 फी सीफ पर आपको तार करना है।

दिल के दिल की महफिल सजाने लगी, दिल के महफिल सजाने लगे के बाद जब भी तुम्हें देखूं, जब भी तुम्हें देखो तो चैन मिल जाता है। यकीन कीजिए, क्या बात है आप में कि जब तुम्हें देख लेता हूँ तो दिल का चैन आ जाता है। वाह,

न्यू सॉन्ग का प्रोग्राम मैं पेश करता हूँ दोस्तों। एक दूसरा न्यू सॉन्ग जो मैं चॉइस करके रखा हूँ, नया प्यार नया एहसास, क्या बात है, नया प्यार नया एहसास। यूबीन नौटियाल के आवाज़ में आप सुनेंगे।

प्यार है नया एहसास है, आप ही का हैप्पी स्टेशन फाह ऑन हिंदुस्तान रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। मुझे सजना से मिला दे, सजना से मिलना है तो मिला दे मुझे सजना से। न्यू सॉन्ग का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं।

जब जब तेरा प्रेम है अच्छा, जब प्रेम है अच्छा तो सजना जरूर मिलेगा सच्चा तेरे हवाले। अरिजीत सिंह एंड श्रिया घोषाल दोनों के आवाज़ों में मैनू चाहिए इश्क में रंग तेरा, एक हो गया अंग मेरा अंग तेरा।

इंडी लव सॉन्ग्स बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग्स में अब की बार पुसी का संगीत आप सुनेंगे। इश्क इश्क दीवाना होता है और मस्ताना होता है, खुशी से क्या क्या होता है दोस्तों।

हर खुशी से हर गम से, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है मून कॉलिंग, नेहा कक्कर एंड गुड़ सिद्धू।

0: जानदा नहीं मैनू, नेहा कक्कर हूं मैं।
1: कक्कर हूं मैं, क्या बात है। हार्ड स्टाइल रोमांटिक सॉन्ग थ्रू लव।

सेलेक्टा बीट्स शो बैंड, सेलेक्टा बीट्स शो बैंड बॉबलिंग मैशअप। न्यू सॉन्ग का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं।

प्यार करे मुझसे, प्यार करे मुझसे, इशहार करे किसी और से, खुदा करे जिसे इशहार करे वो भी प्यार करे किसी और से। आरंभ होता है क्या हुआ तेरे वादा धड़बड़ गिर ब्रोकन हार्ट सॉन्ग का प्रोग्राम। पहला सॉन्ग जो मैं चॉइस करके रखा हूँ, मैं राही भटकने वाला हूँ क्या जाने मटवाला हूँ, माइटी मुकेश की आवाज़ में।

मेरा ही भटकने वाला हो, कोई क्या जाने मतवाला हो। भाईटी मुकेश की आवाज़ में भी ये गीत को सुन रहे थे। आइटम जारी है दोस्तों, या प्रोग्राम गीतों का संगम जारी है, और अब की बार फिल्म चिहल तीफ का एक गीत है, रुला के गया सपना मेरा, नाइटिंगेल लता की आवाज़ में।

हंसी एक नखमे, हंसी के नखमे गाते रहो, हंसी के नखमे गाते रहो, वक्त निकाल कर मुस्कुराते रहो। क्या ज़रूरी है अब सर झुकाने को, क्या ज़रूरी है अब सर झुकाने को, जब तू मेरा साथ न दे सको।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। अनतिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड बुद्धम थोर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो उक्त बुलस्त्र फिया द प्लस रेडियो एंड नतिलक इंटरनेट के लहर द्वारा फाउन FM.NL पर ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइश से हो, जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में, या तो इवनमेंट और खानिशात और ऑर्गामान हो, ऑर्गा वुमन हो, तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो ज़रूर उसके बारे में कॉमर्शियल बनवा कर, या तो अपने व्यापारी के बारे में कॉमर्शियल बनवा कर और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ज़रूर ब्रॉडकास्ट ऐलान करवाना यार हो, तो देखना कैसे चमककार पे चमककार हो जाएगा। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। किफायत सस्ते दाम, सिर्फ इस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो आप मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें तैरेंस कंटोर यूरोप 07-3-6-2-2-7-4-4 या तो आप तार करें अपने 07-3-2-6-2-7-7। तो जो भी रेडियो का काम हो, देंगन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। बेंटिनों खिलत फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अब 07-3-2-2-7-4 या तो आप 07-3-2-2-7-7 पर। तो आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यार, चर्चा करते रहना, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू इसके लिए, और हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। वादा के मुताबिक एकदम बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। और बीते हुए हफ्ते हम लोग पहुंच चुके थे तो फिल्म आग का दरिया जो रिलीज किया गया था 1999 में, और इस फिल्म में दिलीप साहब जी ने काम किया है। मलकाए हुस्न ब्यूटीफुल अभिनेत्री द ग्रेट रेखा जी के साथ साथ भी काम किया है राजीव कपूर। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और अल्फाजे है राजेंद्र कृष्ण जी का। कुछ गाने रह गया था सुनाने के, तो मिलके सुनते हैं छम छम फ्रॉम द मूवी। ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं के सेवा में मैं रख चुका हूँ प्लेयर में सुनाने के लिए। महान गायक कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण जी ने मिलके अति सुंदर बयान को गाए हैं। आप श्रोताओं के नाम

मूवी आग का डरिया दिल है लूटने को तैयार। मशहूर गाने वाली कविता कृष्णा मूर्ति और अनुराधा पौडवाल कोरस के साथ मिलके आप श्रोताओं को ये अति सुंदर बयान सुनाया। कंपोज बाय लक्ष्मीकांत प्यारे लाल अल्फाजे थे राजेंद्र कृष्ण जी का। अगला बयान गोरिया उसकी दीवानी क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में अल्फाजे राजेंद्र कृष्ण का कंपोज बाय लक्ष्मीकांत प्यारे लाल।

beautiful song from the movie आग का डरिया, क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आयशा भोसले जी के मधुर आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज और अल्फाजे थे राजेंद्र कृष्ण का। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चून है गीत और गजल ऑफ दिस गोत नामक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। नगमे चल रहे हैं जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट दिलीप कुमार जी ने काम किया है, तो एक आखिरी बयान आप सुनेंगे एड फिल्म आग का डरिया और इस बार नाइटिंगेल अनुराधा पौडवाल के ब्यूटीफुल वॉइस में ये अति सुंदर बयान की रिश्ता ये मोहब्बत का। एक बार फिर लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साँच पर और अल्फाजे है राजेंद्र कृष्ण जी का।

रिश्ता ये मोहब्बत का निभाना है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साइंस पर सुनाया आप सभी को नाइटिंगेल अनुराधा पौडवाल। अल्फाज़े थे राजेंद्र कृष्ण का फ्रॉम द मूवी आग का डरिया। तो मैं प्रिय श्रोताओं सभी नगमे एडू फिल्म आग का डरिया मैंने आप श्रोताओं को सुना चुका हूँ।

संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और लेखक है आनंद बख्शी। तो फिल्म सौदागर में से आप नगमे आप सुनेंगे इमली का बूटा बेरी का पेड़। ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनने को जा रहे हैं आप सभी को मशहूर गायक फ्रॉम द 80s 90s मोहम्मद अजीज और सुदेश भोसले।

अति सुंदर बयान इमली का बूटा बेड़ी का पेड़ एंड फिल्म सौदागर मोहम्मद अजीज और सुदेश भोसले की आवाज, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, अल्फाजे थे आनंद बख्शी का। राधा नाचेगी फ्रॉम द सेम मूवी सौदागर 1991 और इस बार भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी साथ दे रहा है। महान गायक फ्रॉम द 80s 90s मोहम्मद अजीज, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, अल्फाजे है आनंद बख्शी जी।

Adhanachegi from the movie Saudagar. Manisha Koirala's super hit movie with Dilip Kumar and Raj Kumar. Anand Bakshi ke alfaze Lakshmikant Pyare Lal ke saaj. Aur gaane wale the Bharat Ratna Queen of Melody Lata Mangeshkar aur Mohammad Aziz. Saudagar sauda karke dil ले ले दिल देकर, क्या बात है. ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनने को जा रहे हैं आप सभी को. तीन मशहूर गाने वाले ऐद यार निखंतक, कविता कृष्णमूर्ति, सुखविंदर सिंह और मनहर उदास मिलके अति सुंदर बयान को गाए हैं. आनंद बख्शी का लिखा हुआ अति सुंदर बयान कंपोज बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल.

Bayane title song from the movie Saudagar Dillele Dil Dekar, beautiful song. Kavita Krishnamurti, Sukhwinder Singh, A Manhar Udaas, तीनों ने मिलकर ये अति सुंदर बयान को सुनाया आप सभी को आनंद बख्शी के अल्फाजे लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ। तो मैं पिपरी श्रोताओं, वक्त हो गया है ना कुछ शेयर्स हो जाए हमारे शेयर्स के चाहने वालों के लिए। अर्ज किया है कुछ दोस्ती के बारे में शेयर्स है यारो। खुदा ने अगर ये रिश्ता बनाया ना होता, एक दोस्त को मुझसे मिलाया ना होता, जिंदगी हो जाती हमारी बेजान। जिंदगी हो जाती हमारी बेजान अगर आप जैसे दोस्त को पाया ना होता। क्या बात। रब ने अगर ये रिश्ता बनाया ना होता, मेरी जिंदगी का कोई सहारा नहीं है, इस जहां में कोई हमारा नहीं है। छुआ उनका दामन तो वो हंस कर बोले, छुआ उनका दामन तो वो हंस कर बोले, दोस्त ये दामन तुम्हारा नहीं है। हर कली तुझसे खुशबू उधार मांगे, हर कली तुझसे खुशबू उधार मांगे, अफताब तुझसे नूर उधार मांगे। रब करे तू दोस्ती ऐसी निभाए, रब करे तू दोस्ती ऐसे निभाए के लोग मुझसे तेरी दोस्ती उधार मांगे। दोस्ती से बड़ी कोई जागीर नहीं होती, इससे अच्छी कोई तस्वीर भी नहीं होती। एक नाजुक प्यार का धागा है, एक नाजुक प्यार का धागा है दोस्ती, फिर भी इसे पक्की कोई जंजीर नहीं होती। गुनाह करके सजा से डरते हैं, गुनाह करके सजा से डरते हैं, जहर पी के दवा से डरते हैं। दुश्मनों के सितम का खौफ नहीं, दुश्मनों की सितम का खौफ नहीं, हम तो दोस्तों की वफा से डरते हैं। एक और हो जाए। दोस्त वो भी नहीं जो आपको त्रीत करे, दोस्त वो भी नहीं जो आपको त्रीत करे, दोस्त वो है जो आपके घर आए और कहे आज क्या पका है, जो भी है जल्दी से ले आओ, बहुत जोर से भूख लगी है। ये था कुछ दोस्ती के बारे में शेर शियारो। नहीं रुकती तेरी याद आती है, दर्द से भरा हुआ ये अति सुंदर बयान सुनने को जा रहे हैं आप सभी को भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी, और साथ दे रहा है महान गायक अदियार तख्त निकट द ग्रेट सुरेश वाटकर। अल्फाज है आनंद बख्शी का और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

रुकती तेरी याद आती है। अति सुंदर बयान, दिल को छू लेने वाला सॉन्ग सुनाया आप सभी को भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी, और साथ दिया महान गायक सुरेश वाटकर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ पर अल्फाजे थे आनंद बख्शी जी का। हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूं यारो, कहीं जाना मत।

प्रिय श्रोताओं, आज का इस हसीन कार्यक्रम का शुरुआत मैं करता हूं और वो भी महान संगीतकार मदन मोहन जी के याद में। और श्रोताओं को तो मालूम है कि सबसे ज़्यादा नगमे वो अपनी बहन जो रिश्ता में तो मुंह बोली थी लेकिन असल रिश्ता से और ऊंचा था, ये उनका ही अल्फाजे है जो मैं आप सभी को सुना रहा हूँ। ये दोनों भाई बहन में बहुत ज़बरदस्त प्यार था, हो सकता है संगीत के कारण भी, लेकिन इतने मीठे मीठे धुने बनाए हैं अपने बहन लता जी के लिए ये महान संगीतकार मदन मोहन जी की जितने बार हम लोग सुनेंगे उतने ही बार हम लोगों को और सुनने को मन करेगा। नक्श लियालपुरी का लिखा हुआ ये अति सुंदर बयान फ्रॉम द मूवी दिल की राहें, कंपोज बाय द जीनियस म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन जी। रस्में उल्फत को निभाए, ब्यूटीफुल गजल, गजलों का बादशाह था मदन मोहन जी।

What a great composing by maestro Madan Mohan ji. अल्फाजे थे महान लेखक नक्श लियालपुरी का और आवाज भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी की फ्रॉम द मूवी दिल की राहें। अगला बयान फ्रॉम द मूवी जाल, एक बार फिर क्वीन ऑफ मेलोडी लता जी, मेरी जिंदगी के चिराग को।

जिंदगी के चिराग को, ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी जाल, भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के मधुर आवाज में। अगला बयान और इस बार फ्रॉम द मूवी मौसम, रुके रुके से कदम, महान लेखक द ग्रेट गुलजार जी के अल्फाजे और मास्टरो मदन मोहन जी के साथ एक बार फिर भारत रत्न सुरोका देवी लता मंगेशकर जी।

बयान रुके रुके से कदम आई फिल्म मौसम सुरका देवी क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी की मधुर आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना कॉम्पोज बाय मास्टरो मदन मोहन और अल्फाजे थे गुलजार जी का। पावन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं कार्यक्रम चल रहे है संगीतकारों का दास्ता ओट इस गोट नाम कार्यक्रम और स्पेशल आप सुन रहे हैं महान संगीतकार फ्रॉम द लेट 40s 50s 60s 70s द जीनियस म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन जी के कुछ कंपोज किए हुए नगमे। अगला बयान जरा दिल को थाम लीजिए फ्रॉम द मूवी चिराग और इस बार शुरू का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी रवि साहब जी के एक जबरदस्त सॉन्ग वन ऑफ माय फेवरेट की तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

सुंदर बयान आप श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया। एड फिल्म चिराग, सुर का बादशाह, पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी के मधुर आवाज में, संगीतकार मदन मोहन जी के साज। तुम्हारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, वक्त हो गया ना कुछ ज्ञान के बातें हो जाए। पुराने जमाने और इस जमाने के कुछ विद्वानों, कुछ पढ़े लिखे लोगों और कुछ मशहूर मशहूर लोगों ने इंसानियत, मेंस हेल्थ, मनुष्य के बारे में, यानी कि हम लोगों के बारे में अति सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखे हैं, जो मैं आप

सही थे। ये अशोम ही लेकर इन बातों को मैं आप श्रोताओं को सुनाया कि कुछ ना कुछ सीख तो हम लोग इन बातों से जरूर सीखेंगे। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं और इस बार द फीमेल फैशन फ्रॉम तेरी आंखों के सिवा दुनिया में क्या रखा है, सुरोका देवी क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी मदन मोहन जी के साज पर अल्फाज है महान लेखक श्री गुलजार जी का।

सॉन्ग तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, फ्रॉम द मूवी चिराग, कंपोज बाय द जीनियस म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन, और आवाज था भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी का। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, और इस बार लाते हैं महान गायक हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का पद्म भूषण मन्ना डे जी के मधुर आवाज में आप सुनेंगे फ्रॉम द मूवी डेक कबीरा रोया 1957 राजेंद्र कृष्ण के अल्फाजे मदन मोहन जी का संगीत, कौन आया मेरे मन के द्वारे।

ब्यूटीफुल सॉन्ग कौन आया मेरे मन के द्वारे, पद्म भूषण मन्ना डे जी के मधुर आवास में एड फिल्म देख कबीरा रोया मदन मोहन जी के सांच पर। अगला बयान जमीन से हमें आसमां पर, एक अति सुंदर मेलोडी, एक बहुत ही मीठा धुन आप सुनेंगे। और इस बार लाते हैं प्रोग्राम में क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आशा भोसले जी, साथ दे रहे हैं शुरू का बादशाह रफी साहब जी, राजेंद्र कृष्ण के अल्फाज़े मदन मोहन जी का साज फ्रॉम द मूवी अदालत नगरी 58। एंजॉय द म्यूजिक।

om goosebumps van te krijgen, kippenvel van te krijgen. Het is onderwijs in Surkabatja, Refisabji, Oude Queen of Rock'n'Roll, Asha Bhosleji Awazumi, from the movie Adalat 1958, composed by Madan Mohan. अगला बयान की तरफ लेकर चलते हैं आप सभी को, और साथ ही साथ ये आखिरी सॉन्ग होगा आज का इस सीन प्रोग्राम का स्पेशल जो आप सुन रहे हैं महान संगीतकार द ग्रेट मदन मोहन जी का। और इस बार लाते हैं द मैन विद गोल्डन वॉइस तलत महमूद जी के मधुर आवाज में, साथ दे रही है सुरुका देवी क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी। ये नई नई प्रीत है फ्रॉम द पुराना मूवी पॉकेट मार।

ये नई नई प्रीत है, ब्यूटीफुल सॉन्ग, वंडरफुल सॉन्ग फ्रॉम द पुराना मूवी पॉकेट मार, द मैन विद गोल्डन वॉइस, तलत महमूद जी के मधुर आवाज में साथ दे रही थी क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी मदन मोहन जी के साज पर। हमारे विप्री श्रोताओं, ये तक था आज का स्पेशल मास्टरो मदन मोहन जी का, जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो आप भी जाइए, कुछ इस्तेमाल कीजिए जो आप कर रहे थे, और साथ ही साथ विज्ञापन और देश विदेश का समाचार भी सुनते रहना। ब्रेक के बाद मिलता हूँ यारों, कहीं जाना मत।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 7 3 2 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

जी हमारे संगीत प्रेमियों, प्रोग्राम की शुरुआत तो सदियों से करते आ रहा हूँ, वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ। फ्रॉम द मूवी ललकार 1972, कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी। और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रही है शुरू का बादशाह, द किंग ऑफ मेलोडी रफी साहब जी। क्या गा लो, मुस्कुरा लो, महफिले सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा। जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो, ये कब टूट जाएगा, ये कब समाप्त हो जाएगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है। इसलिए हम लोग तो यहाँ से सदियों से यही कहते आ रहे हैं आप सभी से कि हेप त्यू नाश्ता होते लीफ हैं, कंधे से कंधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो, खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को भी आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे एक अति सुंदर प्रोग्राम पुराने जमाने के महान संगीतकार, द ग्रेट ग्रेट ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर मैस्त्रो मदन मोहन जी के कुछ कंपोज किए हुए नगमे लेकर आया हूँ। और उसके बाद आप सुनेंगे नगमे जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर श्री दिलीप कुमार जी ने काम किया है। बीच में कुछ ज्ञान की बातें हैं, शेर शायरी भी है, तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना, जहाँ पर भी हो, जी साल में हो, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुँचे। अब हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को हील फील लेस्टर प्रसीर पेश किया जा रहा है। रवि साहब जी,

लगा लो, मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत। तो हमारे प्यारे प्यारे मित्रों, हमारे प्रिय प्रिय श्रोतागणों, आज का इस हसीन प्रोग्राम का शुरुआत करता हूँ एक महान फनकार हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का, जिसको जितना तारीफ किए जाए कम है। और क्या मिलाप था ये दोनों महान संगीतकारों का, मैं बात कर रहा हूँ संगीतकारों का, बादशाह और शहंशाह, हसीनों का पुजारी किशोरदा। बहुत प्यार इन दोनों में थे मदन मोहन जी और किशोरदा के साथ, और मिलकर ये अति सुंदर बयान को तैयार किए 1956 एड फिल्म मीम साहब। राजेंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ ये अति सुंदर बयान सुपरहिट सॉन्ग एवरग्रीन सॉन्ग दिल दिल से मिलाकर देखो, आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

Queen of Rock and Roll, Asha Bosledje Kemadura was me. From the movie Mem Saab 1956. Madan Mohanjike Sajper Agame. Male version di Sunadunga. अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं और एक अति सुंदर सॉन्ग है एट द मूवी आखरी दांव 1958 मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ है अति सुंदर बयान कंपोज बाय मास्टर मदन मोहन और सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी तुझे क्या सुनाऊं मैं दिल रुबा तेरे सामने

फाहुंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहुंट के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9735 तक सेफ नफेटा फाहुंट हिंदुस्तानी रेडियो।

एवरग्रीन किशोर कुमार और आशा जी मिलके आपको सुनाएं ये शानदार गीत चला। चलिए देखते हैं अगला गीत हम पेश करने वाले हैं नए पुराने गीतों के संगम में। हम आपको ये सुना रहे हैं ये लवली चीज, सुन लीजिएगा।

क्या बात है, उरित नारायण और अलका याग्निक मिल के आपको सुनाए ये शानदार गीत फान हिंदुस्तानी रेडियो रात के कार्यक्रम में। चलिए हम आपको एक गीत सुनाने वाले नए पुराने गीतों के संगम में। जी हाँ, नए पुराने गीतों के संगम में। क्या ख्याल है अगर आज मैं आपको ये सुनाऊँ, क्या बात है।

टाइटल सॉन्ग। जी हाँ, टाइटल सॉन्ग आपको सुनाया गया उदित नारायण जी और अलका याग्निक, आपको सुनाइए लवली गीत फॉन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। अगला गीत हमने सोचा है तो लीजिए, क्या ख्याल है? आप सोचिए और इत्मीनान से सुनिए, आपको ये गीत अच्छा लगेगा या नहीं। जहाँ तक मेरा ख्याल है, जरूर अच्छा लगेगा। चलो सुनते हैं।

ना मिलो हमसे, कहीं प्यार ज़्यादा न हो जाए। कविता कृष्णमूर्ति और सोनू निगम आपको मिलके एक गीत सुना, मैं तो मुकेश, इस तरह से फिल्म ठोकर में से निकाल कर।

मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों के ख्यालों में। निगती फिर सिर्फ तक हिस्सा 74 का ये गीत मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म ठोकर में से निकाल कर म्यूजिक डायरेक्टर श्याम जी घनश्याम जी के साज पर ये गीत पेश हुआ। चलिए, क्या ख्याल है अगला गीत के बारे में? अगला गीत के बारे में मैं हम आपको ये सुना रहा हूँ, बहुत दिन हुए ये गीत भी हमने भी नहीं सुने। चलो मिल के सुनते हैं।

रफी साहब की आवाज़ में और सुमन कल्याणपुर साथ दी। यह शानदार गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए, अच्छा अभी थोड़ा समय बाकी है विज्ञापन से पहले, चलिए हम आपको सुनाते हैं ये गीत।

0: वाह
1: क्या बात है, रफ़ी साहब की आवाज़ में ये शानदार गीत पेश हुआ और आपने सुने, उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छा लगा हो। FM पिन चैनल पर आप चून हैं, जो लोग चून की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और देखते हैं अगला गीत। अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है, सुनते रहना ये गाना और नाचते रहना, झूमते रहना, कुछ भी करते रहना।

वाह, प्यार तो एक दिन होना था, होना था, अगर होना था जरूर। रफ़ी साहब और लता जी मिलके आपको सुनाए ये शानदार गीत, और आप चून है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, और वो है एवरग्रीन किशोर कुमार, फिल्म धर्मात्मा में से 1975 का ये गीत हम आपको सुना रहे हैं।

एवरग्रीन किशोर कुमार की आवाज में सुनाया गया फिल्म धर्मात्मा में से निकाल कर निकली फैफी सीमित का ये गीत और पेश हुआ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए, ये गीत सबसे पहले आपने सुने थे पंकज उदास की आवाज़ में, और वही गीत हम आपको सुनाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मुकेश जी ने ये गीत गाए थे लेकिन निकला नहीं था। तो जब ये गीत निकला पंकज उदास ने गाए हैं तो लोगों समझे वाह क्या बात है। लेकिन कुछ दिन बाद जब मुकेश की आवाज़ में लोग गीत सुने तो जान गए कि हाँ, मुकेश जी ने पहले गाया था और बाद में पंकज उदास ने गाया। चलो हम आपको सुनाते हैं।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतो निकलिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

ये हाथों में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास है तेरे होठों की प्यारे, ऐ दिल भर में

0: हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का दादा आम।
1: ये वाक्य आपने सुने, बड़े मियाँ दीवाने। जी हाँ, ये शानदार गीत हम आपको सुनाए इस तरह से। चलिए अगला के नंबर हम पेश करने वाले हैं, इस तरह से देखते हैं दिल तेरा दीवाना में से निकाल कर।

चौहान जी, रफ़ी साहब और लता जी फिल्म शंकर जय किशन में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ और आप सुन रहे हैं। उम्मीद है गीत आपको अच्छा लगा होगा। और चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है।

बिड्डू के साज पर हम तुम्हें चाहते हैं इसे ये गीत चलाया गया हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में फिल्म कुर्बानी में से निकालकर मनहर उदास आपको सुनाइए। चलिए आपको एक लंबा कवाली सुनाते हैं, ये मजहबी कवाली नहीं है तो भागिए मत जी ना, ये एक मोहब्बती कवाली है। तो लीजिए आपको सुनाया जाए रफ़ी साहब आशा जी और कोरस, क्या ख्याल फिल्म द ट्रेन में से निकाल कर।

वाह क्या कव्वाली था। पल दो पल का साथ हमारा, दो पल का रिश्ता है, ये गीत पेश किया गया शाम के कार्यक्रम में। चलिए हम पेश करते हैं अगला गीत, और वो ये है

याद रहेगा, ये रंगीन ज़माना है, याद रहेगा। ये शानदार गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला नंबर हम पेश करने वाले हैं वो ये है।

तुम्हें एक प्यार करते हैं करते रहेंगे। अब ये गीत चला सुमन कल्याणपुर और रफी साहब ने पेश किए। चलिए कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं और हम पेश कर रहे हैं इस तरह से रवि साहब की ये गीत फिल्म कर्ज। जी हाँ, फिल्म कर्ज में से निकाल कर चलो सुनते हैं।

दर्दे दिल दर्दे जिगर रफी साहब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ पर आपको सुनाया फिल्म कर्ज में से निकाल कर। चलिए माइक मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, जी हाँ करोड़ों के दिल पर राज करने वाला इस तरह से है।

आंखों में रंग क्यों लाया लता जी, और मैं तू मुकेश द हाथ रब ऑफ मिलियंस, एक फूल चार कांटे में से निकाले हैं, नेखन तीन सस्तक 1960 का ये फिल्म, और हम आपको सुनाएं। चलिए एक गीत और चला रहे हैं, जी हाँ, और ये भी जाना पहचाना गीत है मुकेश जी का, जी हाँ, सुन लीजिए इस तरह से, जी नहीं, एवरग्रीन किशोर कुमार, क्षमा कीजिए। ग्रीन किशोर कुमार।

एवरग्रीन किशोर कुमार जी, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत, जबकि आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। तो लीजिए अगला गीत हम चल आपको सुनाने वाले हैं, क्या ख्याल है ये, इस तरह से फिल्म आओ प्यार करें।

लता जी की इस गाने पर मुझे कुछ नहीं कहना है। जी हाँ, मैं कुछ नहीं कहूँगा और चलाऊँगा ये गीत। फिल्म ये रात फिर ना आएगी, निकिती सशस्त को 1966 का ये गीत। जी हाँ, सुनिए महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में।

मेरा प्यार वो है महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में अपनी सभी इच्छाएँ उन्होंने रख दी। फिल्म का नाम है ये रात फिर ना आएगी निगती शस्त्र को 1966 का ये गीत ओपन नैयर के साज पर हमने पेश किए। लीजिए प्लेयर में एक गीत हमने और रखे है मैथी मुकेश जी का, पता नहीं बहुत दिन हुए होंगे आप ये गीत शायद सुने हैं, मैं भी बहुत दिनों बाद ये गीत चला रहा हूँ, ये भी हो सकता है आपने हाल ही में सुने होंगे, तो मेरा बदनसीबी है, वरना लीजिए मैथी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुना रहा है।

मैथी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस अगर सैड सॉन्ग हो तो मुकेश जी तो गम का दरिया है। और ये गीत हम आपको सुनाएं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। फिल्म अप्रैल फुल में से नहीं थी फिर से 1964 का ये गीत लता दी शंकर जयकिशन के साथ।

टून है फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो पर। तो चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, अब वो ये है, कभी कभी आप कहीं जलसे में जाते हैं यानी नेवता में जाते हैं, कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो, को शुशु शुशु बात करता है यानी छुपके छुपा के, तो इसके बारे में भी बॉलीवुड ने एक गीत बनाए हैं। चलिए वही गीत हम आपको सुनाते हैं, आशा जी आपको सुना रही है कि लोग कभी कभी शुशु शुशु करते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं, कानों में बात करते हैं, खुल के बात नहीं करते हैं, जिसे कहते हैं काना फुसकी।

धीरे धीरे बोलो जी, नाचते नाचते आप शायद थक गए होंगे। जी हाँ, मुमकिन है थक गए होंगे, तो लीजिए मैं आपको थोड़ी देर आराम देता हूँ।

हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर ये गीत पेश हुआ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। हमने पेश की मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी फिल्म एक बेचारा में से निकाल कर निकली तुम से ही तक का ये गीत। चलिए अगला गीत है और वो गीत है नतीजा हमारी मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। क्या ख्याल है?

ये तुम भी ना सोचो, ये हम भी ना सोचे, मैथिली मुकेश और आशा जी मिलके आपको गीत ये सुनाए ओ फरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये सुनाऊं, इस तरह से आ रहा है।

छाई बरखा बहार आंगना फुहार निगती निग्न से अस्तक। आशा जी और जी लता, आशा और लता मिलके गाए हैं फिल्म चिराग में से निकाल कर। निगती निग्न से अस्तक 1969 का ये गीत हमने पेश की मदन मोहन के साज पर। चलिए मदन मोहन जी के बाद हम पेश कर रहे शंकर जय किशन, क्या शंकर जय किशन इस तरह से।

0: ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओहो काम तो बताइए बताइए।
0: ना ना ना पहले जरा

0: बोलो।
1: आज लेना एक वादा है।
0: क्या?
1: आजा आजा शादी का इरादा है।
0: क्या?
1: शादी का इरादा है।
0: शादी
1: का इरादा है।
0: शादी ना बाबा ना।
1: मगर क्यों?
0: शादी तो बर्बादी है।
1: क्या कहती हो?
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं सुनो तो बुलाया इसलिए आए हैं तो काम भी बताइए पहले जरा आप मुस्कुराइए पहले जरा आप

0: आप यहाँ आए किस लिए?
1: आपने बुलाया किस लिए?
0: अच्छा आए हैं तो काम भी बताइए।
1: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
0: मुस्कुराने की न कोई बात है।
1: देखिए तो क्या हसीन रात है।

आप यहाँ आए किस लिए? वादे तो बहुत लिए, लेकिन करना पड़ेगा ज़रूर, तो अवश्य करेंगे। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, और ये गीत इस तरह से है।

आओ प्यार कर ले। जी हाँ, फिल्म सच्चा झूठा में से निकाले हैं आशा जी और साथी मिलके आपको सुनाए नेगती सईफ उनतक का ये गीत है कल्याण जी आनंद जी के साथ पर गुलशन बावरा का लिखी हुई गीत हमने पेश की फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम। जी हाँ, तो अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, तो क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये गीत सुनाऊँ। गंवार में से निकाल रहे हैं आशा जी और रफी साहब।

फिल्म गंवार में से निकाले हमने नौशाद अली की साज पर, और रफ़ी साहब और आशा जी आपको सुनाई ये शानदार गीत ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप चून हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है अगर ये पेश करूं, बस धमाकेदार गीत है।

एक बेचारा प्यार का मारा, रफ़ी साहब की आवाज़ में हम आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत क्या ख्याल है? जी हाँ, मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ अ मिलियंस, कंचन जी के साथ फिल्म धर्मात्मा में से है।

तुमने किसी से कभी प्यार किया है, ये शानदार गीत चला। जी हाँ, ये शानदार गीत चला ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जी हाँ, तो चलिए कार्यक्रम में हम आगे कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। और क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ इस तरह से,

0: दुनिया में हमारा दिल होते है, ये शानदार गीत हम निकारे फिल्म दिल ही तो है में से शंकर जय किशन के साज पर पेश हुआ ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जबकि लीजिए लता जी एक बार फिर है, जी हाँ, पंडित रविशंकर के त्रिभुत के लिए निगित शस्त्र का ये फिल्म है।
1: ये ऑल इंडिया रेडियो बम्बई है। अब हम आपको कुछ पुराने गानों के रिकॉर्ड सुनाएंगे। आज से 10 साल पहले इन गानों ने धूम मचा दी थी। पहले सुनिए सांवरे सांवरे, गायिका अनुराधा राय।
0: जिसे के पंडित रविशंकर वो मशहूर सितारे थे। लता जी की आवाज में

ये साज कभी पंडित रविशंकर जी ने स्टेज पर बजाया था और इसी साज से उन्होंने ओपनिंग की यानी शुरू की। तो ये धुन को म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन ने इसमें जान डाल दी और इसे लता जी से ये धुन गवाया शब्दों के साथ। और हमने पेश की ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत पेश करने वाले आशा जी उर्फ़ी साहब जी, हाँ फिल्म जिद्दी में से निकाले हैं।

आशा जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म ज़िद्दी में से निकाले हैं ये गीत और हमने पेश किए आपके लिए। चलिए अगला गीत चलाने वाले हैं, क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊँ, लता जी और मन्ना दे जी। जी हाँ, लता जी और मन्ना दे जी मिल के आपको सुनाएंगे ये शानदार गीत। और देखते हैं तो इसे मैं निकाल रहा हूँ फिल्म रात और दिन में से, शंकर जयकिशन के साज पर, बस इस तरह से।

लता जी और मन्ना दे जी फिल्म रातों दिन में से निकाले हैं और शंकर जय किशन के साज पर हमने पेश किए। लीजिए एवरग्रीन किशोर कुमार अपने प्यार की इजहार कर रहा है और आगे इन्हीं से सुनिए एवरग्रीन किशोर कुमार।

तुम कितनी खूबसूरत हो, क्यों दिल तुम पे है इतना दीवाना, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए फिल्म जंगल में मंगल में से निकाल कर ये गीत हमने पेश किए।

वाह क्या बात है रफ़ी साहब और लता जी, आपको सुनाए फिल्म माधवी में से निकाले हमने निगति निघ्न शस्त्र का ये गीत, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर 1969 का ये गीत चला ओवर फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। वो है क्या ख्याल है, चले सुनते हैं।

ये घर बहुत हसीन है। ये शानदार गीत चला ओवर फ्लावर हिंदुस्तानी रेडियो, जगजीत सिंह जी और चित्रा सिंह जी ये दोनों मिलके आपको सुनाए हैं फिल्म है साथ साथ में से निकाल कर। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आपका हृदय से स्वागत है। और तो लीजिए, अगर आप हैं इस वक्त हम आपको सुनाते हैं क्या ख्याल है ये गीत इस तरह से आ रहा है।

रफी साहब की आवाज में आपको सुनाया गया। आपके हसीन रुख फिल्म बाहर फिर भी आएंगे में से निकाले हैं, ओपन अय्यर के साथ पर हमने पेश की। तो लीजिए ओपन अय्यर के बाद क्या ख्याल है, मैं तो मुकेश द हार्टर ऑफ मिलियंस, दिल ही तो है निगत इंद्रियन से 1963 का ये गीत मुकेश जी और सुमन कल्याणपुर जी।

मस्ती भरा है शमा मन्ना दे जी और लता जी मिलके फिल्म परवरिश में से आपको हमने ये गीत सुनाए निकली अख्तम फैब तक 1958 का ये गीत देखते हैं दत्ताराम के साज पर। लेकिन उससे पहले दिल हिते है के गाना चल रहा था, लेकिन मुझे भी नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गीत ने कूद फान मचाकर बस फिल्म परवरिश का गीत बजने लगा। बहरहाल फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुने जो लोग चुन की मीटर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम पेश कर रहे हैं ये गीत

छलका ये जाम रफ़ी साहब की आवाज़ में आपने आपके आपको हम सुनाए हैं इस तरह से फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए देखते हैं ये गीत फिल्म दिल ही तो है का एक बार फिर, कौन जाने अब की नाकूद है, लेकिन कोई और गीत हम आपको सुनाने वाले हैं। इस तरह से आ रहा है